अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: जन्मभूमि की
1: जय,
0: जय श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की
1: जय,
0: सद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
1: जय,
0: गो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
1: जय,
0: समस्त पूर्वाचार्यों की
1: जय,
0: सर्व संत वैष्णव भगवान की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदराभार अभिनंदन आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आज शनिवार है, 1 अगस्त 2026, पंचांग शक्संवत 1948 के श्रावण महीने की तीसरी तिथि। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण प्रारंभ होता है। आपका उद्घोषक इकबाल कादिर उपस्थित है आज का ये विशेष प्रसारण लेकर। हमारा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। श्रोताओं, आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 30वां दिन है। हम सभी यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा की कामना करते हैं और आज के इस विशेष प्रसारण को आरंभ करते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। आज यात्रा का 30वां दिन है। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। और इस विशेष प्रसारण का मकसद, इसका उद्देश्य यही है कि अपने यात्रियों तक ताज़ातरीन जानकारी पहुँचाए, ताज़ातरीन अपडेट्स पहुँचाए। और अभी जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट आपके लिए ये है कि जो यात्रा है आज, ये किसी भी यात्री को फ़िलहाल जम्मू से श्रीनगर की जानेब आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर फिसलन और कई जगह पर जो है भूस्खलन होने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही में फ़िलहाल बाधाएं जारी हैं। आप भी इस विशेष प्रसारण का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी कोई बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना कोई सुझाव, अपनी कोई शिकायत। हमारे हेल्पलाइन नंबर जो स्टूडियोज़ का नंबर है, उस पर आप SMS या WhatsApp के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट करें, 9596990954। आप ईमेल के जरिए भी हम तक अपनी कोई बात पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा नोट करें, akashwanibaltal@gmail.com। जी हाँ, ये विशेष प्रसारण जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस पहले घंटे का, पहले सत्र का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हमारे घाटी के जो विभिन्न संवाददाता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बात करते हैं, उनसे जो भी हम बातचीत करते हैं, उनके पास जो भी अपडेट्स हमारे लिए होते हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो अभी यात्रा बारिशों की वजह से रुकी हुई है, हालांकि यहाँ श्रीनगर में भी अभी पिछले लगभग एक घंटे से मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और हमें अपडेट्स ये हैं कि बारिश अभी भी जारी है। और जहाँ तक हम बात करें जम्मू की, तो हमने ये आपको बताया कि जम्मू से आज फ़िलहाल के लिए किसी भी गाड़ी को श्रीनगर की जानिब आने की इजाज़त अभी नहीं है। मज़ीद जो अपडेट्स हम तक पहुँचती हैं यात्रा के हवाले से, वो हम आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है। और हमारा ये विशेष प्रसारण आप सुनते रहिए और इसका हिस्सा आप बने रहिए।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब हमसे जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, खैर मकदम है आपका आज के इस विशेष प्रसारण में, और जम्मू में क्या कुछ हालात हैं मौसम के हवाले से और क्या कुछ हालात हैं यात्रा के हवाले से, कृपया करके हमारे जो श्रोता हैं उन्हें अवगत कराएं।
1: यहाँ मौसम जो है, जैसा आपने कहा कि मौसम की जानकारी की बात करें तो यहाँ मौसम अबरालूद है, आसमान पर बादल, घने बादल छाए हुए हैं और कल दोपहर के बाद यहाँ जम्मू में तेज बारिश का एक सिलसिला लगभग एक घंटे तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद बारिशें जरूर बंद हुई लेकिन मौसम पूरी तरह से बना हुआ है बादलों के साथ। तो इस बीच जो है कि पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा का जो पर्व सिलसिला है जारी है, वो अब श्रावण मास में शहर और आसपास के प्रमुख शिवालयों में बाबा बर्फानी की आराधना जारी है। सुबह से ही देर शाम तक श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चनाएं कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इससे शहर का वातावरण शिवमय बना हुआ है और यहाँ के श्रद्धालुओं की विशेष आस्था का केंद्र जो है ये शिव मंदिर बने हुए हैं और श्रावण मास में पूजा अर्चनाओं का धार्मिक महत्व जो है वो बढ़ जाता है। इस दौरान यहाँ श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं जो है वो पहले ही की तरह पूरी तरह से मिल रही है। श्रद्धालुओं का उत्साह, जोश और यात्रा के दौरान मौसम और सुरक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की जाती है। जैसा जिस तरह से जोश और उत्साह बराबर बना हुआ है उसी तरह से मौसम और सुरक्षा के संबंधी जो दिशा निर्देश है उसका पालन करने की भी अपील की जा रही है ताकि यात्रा को न सिर्फ सुखद आरामदेह बनाया जाए वहीं सुरक्षा को भी और सख्त और बेहतर बनाया जाए। यहाँ सुरक्षा एजेंसियां तीर्थ यात्रा को लेकर सख्ती से रोज समीक्षाएं करती है ताकि तीर्थ यात्रियों को शहर के आसपास के मंदिरों में जाना और उसके अलावा यहाँ के पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थलों की तरफ जाना उसको लेकर यहाँ पुलिस, सीआरपीएफ, तमाम तरह की जो सुरक्षा है उस पर भी नजर बराबर रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को यकीनी भी बनाया जाए। और जैसा मैंने कहा कि कल देर शाम सख्त तेज बारिश हुई थी और बारिशों की वजह से पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह पर भूस्खलन भी हुआ और लगातार सड़क को ठीक करने के लिए कर्मचारी, मशीनरी, हाईवे अथॉरिटी दिन रात काम कर रही है ताकि सड़क को बेहतर बनाकर ट्रैफिक की आवाजाही को फिर से यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में सख्ती से काम हो रहा है। हालांकि पिछले दो दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद है और कल बंद होने के बावजूद भी यहाँ तीर्थ यात्रा को पहले निवास स्थान भगवती नगर से इजाजत मिली थी रवाना होने की, लेकिन आज ये अनुमति नहीं मिल पाई क्योंकि मौसम भी खराब है और मौसम के खराब होने की वजह से भूस्खलन की जगह पर जो काम हो रहा है उसमें कई बार बाधाएं आ जाती हैं और जिसकी वजह से आज जो है निवास स्थान भगवती नगर से तीर्थ यात्रा को रवाना होने की अनुमति नहीं मिली। और शहर में जैसा मैंने कहा कि घने बादल है और उदयपुर के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की जानकारी मिल रही है। खासतौर पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा इलाका है इस यात्रा का, वहाँ हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बादल भी बराबर बने हुए हैं, इसीलिए इस दौरान बारिश के बीच जो सड़क पर काम करने की बाधाएं आ जाती है उसी को देखते हुए आज जो है तीर्थ यात्रा को रवाना होने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन ये जो स्थल पर काम हो रहा है ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग को बेहतर बनाया जा सके और श्रद्धालुओं से भी कहा गया है कि जैसे ही मौसम का मिजाज बेहतर होगा और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति बेहतर हो जाएगी, यहाँ से जम्मू के पहले निवास स्थान से यात्रा के लिए अनुमति मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल न सिर्फ स्थानीय ट्रैफिक बल्कि

0: श्रद्धालुओं के लिए भी राष्ट्रीय राजमार्ग को आज बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो और यात्रा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, उसी को लेकर ये फैसला किया गया है।
1: जी मौसम के हवाले से जी मौसम के हवाले से जब जैसा हमने पिछली बार देखा था कि रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था जम्मू के लिए, तो ऐसा कोई अलर्ट जारी किया गया है इस बार या मौसम के कब तक ठीक होने की आपके पास इतलात है?
0: लगातार कि मौसम विभाग है अपनी जो भविष्यवाणियां कर रहा है उसमें खासतौर पर इस सावन के महीने में बारिशों का सिलसिला एक अलग तरह से चलता है। इसमें पूरी तरह से मौसम विभाग के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है वो कहीं कमोबेश अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से चलता है। तो खासतौर पर जम्मू की बात में करूं, श्रीनगर में फिर भी जो मतलब जो कश्मीर की घाटी की बात है तो वहां तो अलग एक इतना ज्यादा असर नहीं होता, हालांकि वहां भी बारिशें और इस सिलसिले में जो मौसम है वो बना हुआ है, बादलों से भरा है। लेकिन यहाँ जो भविष्यवाणी की गई थी ऑरेंज अलर्ट की भविष्यवाणी है, लेकिन वो शहर में कब बारिश होगी इसका अंदाजा बड़ा मुश्किल
1: लगाना मुश्किल जी जी
0: हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बारिश का आना और जाना ये एक बड़ा मुश्किल मामला होता है और बादल बने हुए हैं, कल पूरे दिन भी बादल थे लेकिन देर सुबह बारिश नहीं हुई, हल्की सी बारिश हुई हल्का सा, लेकिन दिन में बारिश कर दोपहर के बाद बहुत तेज हुई और जिसकी वजह से यही हाल पहाड़ी सिलसिलों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से बारिशें होती है। सावन के महीने में कहते हैं कि एक जगह बारिश हो रही होती है, एक जगह धूप होती है, तो एक अलग तरह का चैलेंज होता है भविष्यवाणियों को लेकर भी। लेकिन फिर भी यहाँ जो है ये पूरा लगभग कोई 3 से 4 जो तारीख है आज अगस्त की पहली तारीख है तो 3 से 4 तक कहा गया है कि बादलों का सिलसिला जारी रहेगा, बीच बीच में हल्की बारिशें होंगी, कई इलाकों में बूंदाबांदी होगी, कई इलाकों में मौसम ठीक रहेगा। तो ये एक अलग तरह की भविष्यवाणी का चैलेंज होता है, इसमें प्रशासन भी पूरी तरह से सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ ही मौसम की इस परिस्थिति को देखती है ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी तरह से कोई भूस्खलन ना हो, ट्रैफिक की आवाजाही बंद ना हो, उसी को लेकर फैसला लिया जाता है। बारिशें भी कई बार हुई लेकिन यात्रा को इजाजत भी मिली रवाना होने की, लेकिन इस बीच जब जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग या इन पहाड़ी सिलसिलों में तेज बारिश का आगमन होता है हालात एकदम बदल जाते हैं और जिसकी वजह से तीर्थ यात्रा के साथ साथ स्थानीय ट्रैफिक जो है वो भी
1: बाधित होता
0: है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये पूरी तरह से एक समझ लें आपकी घाटी और पूरे देश के बीच एक शहरक है और पूरी तरह से ये इसी के थ्रू सभी तरह का जो माल है वो घाटी की तरफ जाता है, खती रुकी हुई है उनके ऊपर भी एक अलग तरह से बाधाएं लग जाती है और परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब मेन और मशीनरी जो है हाईवे अथॉरिटी जो है वो दिन रात काम करती है और बहुत बड़ी मशीनरी के साथ काम करती है, लेकिन भूस्खलन कई बार तेज खतरनाक भूस्खलन हो जाते हैं जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन जो कर्मचारी है हाईवे अथॉरिटी है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द ही फिर से चलने लायक बनाया जाएगा और यात्रा की अनुमति मिल जाएगी।
1: जी हम भी यही कामना करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि मौसम का जो मिजाज है, मौसम के जो हाल हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जैसा कि आपने बताया कि एक शहरक की मानिंद है ये, घाटी को पूरी दुनिया से या पूरे मुल्क से जोड़ने की एक वाहिद एक रास्ता है और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो मौसम है वो जल्दी से बहाल हो जाए, सड़क जल्दी से बहाल हो जाए और साथ ही में यात्रा का जो सिलसिला है वो भी फिर से बहाल हो जाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए जावेद साहब, आगे भी आपसे बात होगी, इस वक्त के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब टेलीफोन लाइन पर बात कर रहे थे हमसे और हम तक पहुंचा रहे थे अपडेट जो श्रीनगर जो जम्मू में इस वक्त मौसम है और जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर जम्मू।

राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर किस तरह का वातावरण इस वक्त है उसके हवाले से हमें अवगत करा रहे थे। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज 30वां दिन है। यात्रा जारी है या बंद है उसके हवाले से हमारे पास अभी कोई अपडेट नहीं आया है, और जैसा कि मौसम के मिजाज को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यात्रा जो है आज फिर से जो है सस्पेंड हो सकती है, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है जम्मू में या घाटी में वो बदला बदला है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, हर एक जगह पे बारिशों के होने की जो इतला है हम तक पहुंच रही है। और हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, हम आगे अपने जो संवाददाता हैं बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका उसके ऊपर कैसा वातावरण है इस वक्त है। और हमारे साथ बने रहिए और ये विशेष प्रसारण एंजॉय करते रहिए।

0: श्रोताओं, इसी बीच हमारे साथ हमारे जो रामबन के बानीहाल के संवाददाता हैं मोहम्मद तस्कीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इनसे सबसे पहले इनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के इस विशेष प्रसारण में। और तस्कीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हाईवे के हवाले से आपके पास क्या जानकारी है और आज की जो यात्रा है, क्या किसी यात्री को या किसी लोकल गाड़ी को फिलहाल अभी जम्मू वाया रामबन से आने की अनुमति दी गई है या नहीं?
1: देखिए, शुक्रिया। आज जो रात से ही कुछ इलाकों में हल्के हल्के बारिशें हो रही हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि कल ट्रैफिक को बंद रखकर काम किया गया था, सिर्फ श्री अमरनाथ यात्रा के काफिले को जम्मू से बालतल की तरफ निकाला गया था कल सुबह, और उसके बाद काम शुरू किया था रामबंद सेक्टर में और उधमपुर सेक्टर में मुख्तलिफ मुकामात पर, जो हाईवे की हालत खराब हुई है पिछले बारिशों की वजह से, मौसमी खराबी की वजह से, तो उसे कुशादा करने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए, उसके अपग्रेड करने के लिए, और ऊपर जो पहाड़ियों पर मलबा वगैरह जो गिर आता था, लटकता मलबा कहा था ट्रैफिक हुकाम ने, नेशनल हाईवे ने, तो उस लटकते मलबे को उतारना था ताकि ये कोई रिस्क जो बना रहता है, खतरा लगा रहता है कि कोई गाड़ी इसके नीचे ना आए या कोई हादसा ना हो जाए, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई शुरू की गई थी। तो ये अभी जारी है क्योंकि बारिशें हुई है कल भी वहां पर उधमपुर के देवल इलाके में, जहां पर मेन काम है, जहां पर मेन स्लाइड है उसे हटाने के लिए, तो लेकिन वहां पर उन्होंने क्लियर किया है, लेकिन वहां कीचड़ बहुत ज्यादा है, रोड पर गाड़ियों का गुजर जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसी वजह से आज श्री अमरनाथ यात्रा का जो 25वां बैच आया चाहता था तो उसे आने नहीं दिया गया, जम्मू से उन्हें रोका गया है आज मौसमी खराब हालात, मतलब सड़क की हालत की वजह से, और इस दौरान जो हल्की हल्की बारिशें रामबन उधमपुर बानहाल सेक्टर में हो रही हैं, तो इस दौरान जो हुकाम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट में आज स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान किया है क्योंकि मौसमी खराबी को मद्देनजर रखकर यह फैसला लिया गया है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, तो उस वजह से जो मौसम को, मतलब मौसमी खराबी की वजह से इसको भी स्कूलों में भी जो ट्रैफिक की, ये जो स्कूलों में भी जो बच्चों को आज, मतलब उसको, उनको छुट्टी की गई है। फिलहाल बारिशें हो रही है और उम्मीद है कि जो ट्रैफिक हुकाम है उनके मुताबिक ये दोपहर 11:30-12 तक उम्मीद है हाईवे बहाल किया जाए, कोशिश की जा रही है कि इस बार जो रूटीन ट्रैफिक है उसे बहाल किया जाए, और इसमें अभी कई और घंटों का वक्त लग सकता है।
0: जी, मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है और उनके हिसाब से मौसम कब ठीक होने की उम्मीद है?
1: महकमा मौसमियात ने आइंदा कई रोज तक, मतलब ऐसे वेट वेदर की पेशनगोई की है जिसमें बारिशें भी बीच बीच में हो, तेज बारिशें भी हो, दरमियाना हल्की बारिशें भी हो, और गरज चमक का भी सिलसिला हो, तो उसी सिलसिले की, उसी पेशनगोई की कड़ी के तहत एन उसी के मुताबिक अगर कहेंगे तो ये जो मौसमी खराबी है चल रही है, तो आइंदा कई रोज तक ऐसा ही रहने की, हल्के हल्के मतलब बूंदाबांदी या बारिशों की उम्मीद जाहिर की गई है।
0: जी, हम उम्मीद करते हैं कि मौसम जल्दी से ठीक हो जाए और जो यात्रा है वो फिर से बहाल हो जाए और जो लोकल ट्रैफिक चलता है जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू, उसको भी बहाल करने की जो है कोशिशें हैं वो जारी हैं और वो कोशिशें और ये जो काम है वो सफल हो जाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए।
1: शुक्रिया सर।
0: मोहम्मद तस्कीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बात कर रहे थे बानीहाल से और हमें अवगत करा रहे थे जो नेशनल हाईवे का हाल है इस वक्त। इन्होंने बताया कि कई एक जगहों पर भूस्खलन आया जिसकी वजह से कल सवेरे सिर्फ उस एक काफिले को जाने दिया गया, उस एक काफिले के लिए रास्ता बनाया गया जिनको, जिन यात्रियों को बानीहाल से जाना था बालतल के लिए, और उसके बाद जो है कई एक जगहों पर फिर से पसियां गिराई और जो लटकता हुआ मलबा, जैसा इन्होंने बताया, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ऐसी छुटपुट घटनाएं, ऐसी बड़ी घटनाएं, छोटी घटनाएं होती रहती हैं, और इस सब से बचने के लिए सभी यात्रियों को, सभी लोकल्स को महफूज रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये फैसला किया गया कि यात्रा को भी और जो लोकल ट्रैफिक चलता है उसको भी फिलहाल बंद किया जाए, क्योंकि किसी भी हादसे का सामना किसी गाड़ी को ना करना पड़े, जो कि एक अच्छी बात है। और उन्होंने

ये भी बताया कि दिन रात जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अपने कर्मचारियों के साथ, अपनी मशीनरी के साथ रास्ते पर काम कर रही है, और हमारी यही उम्मीद रहेगी। हम यही अपेक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जो यात्रा है वो फिर से बहाल हो जाए और जो मौसम का हाल है, मौसम का मिजाज है, उसमें भी तब्दीली आए। फिलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए और आप तक ये अपडेट भी पहुंचाते चलें कि जो बानिहाल का जो बेस कैंप है, जो बालतल का बेस कैंप है, आज सुबह बालतल के बेस कैंप से जो है यात्रियों को पवित्र गुफा की जानिब इजाज़त दी गई है जाने की। हालांकि इन यात्रियों की संख्या कितनी है उसके बारे में हमारे पास अभी इतलात नहीं है, मगर ये इतला हम तक पहुंची है कि जो यात्रियों का एक समूह है, यात्रियों का एक ग्रुप है, आज रवाना किया गया पवित्र गुफा की जानिब, और दर्शन करके वो जब वापस आएंगे, हम उनकी वापसी और उनके जो जो जब वो चलते जो जब वो रास्ते से जाएंगे, वहाँ रास्ते का मौसम, उस इलाके का मौसम अच्छा हो और इन्हें किसी कारणवश किसी भी कष्ट का सामना ना करना पड़े।

0: श्रोताओं, आप तक अपडेट्स पहुंचाने का सिलसिला जारी है। आप तक जो ताज़ा तरीन जानकारी है यात्रा के हवाले से, वो पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू। इमरान, आपका खैर मकदम है, वेलकम है आज के इस विशेष प्रसारण में। बताइए, सबसे पहले मौसम कैसा है बाहर?
1: अभी श्रीनगर में काफी तेज बारिश हो रही है,
0: जी।
1: पिछले तकरीबन 2-3 घंटों से यहाँ बारिश हो रही है और इवन की इस वक्त भी श्रीनगर शहर में हैवी रेनफॉल हो रहा है। लेकिन बारिश के बावजूद भी आज श्रीनगर से अमरनाथ जी यात्रियों का जो काफिला है, जो एक कानवाई है, वो यहाँ पंथा चौक ट्रांजिट कैंप से बालतल की तरफ रवाना की गई है और इस कानवाई में कई सारे अमरनाथ जी यात्री है, खासकर इनमें मेल फीमेल साधु साधी शामिल है। ये वो यात्री हैं जो कल जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से यहाँ पहुंचे थे और कुछ यात्री परसों भी कानवे में आए थे और जिन्होंने श्रीनगर में स्टे किया था और आज सुबह इन्हें रवाना किया। इसके अलावा मजीद यहाँ अभी यात्री हैं ट्रांजिट कैंप में और जिन्हें शायद अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से आगे रवाना किया जाएगा अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए। और ये जो यात्री यहाँ रुके हैं, इनके लिए यहाँ प्रशासन की तरफ से, जैसे कि हम यूजुअली या बार बार अपडेट कर रहे हैं कि हर तरह की सुविधाएं रखी गई है अमरनाथ जी यात्रियों के लिए। और जो यात्री शाम को यहाँ पहुंचते नाइट स्टे करते हैं तो यहाँ रहने के लिए सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इनके लिए रखी गई है। और श्रीनगर में चूंकि इस वक्त मौसम खराब है, लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि मौसम बहुत जल्द साफ
0: हो जाएगी
1: ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और ओवरऑल इस अमरनाथ यात्रा को लेके श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में जहां बेसिक फैसिलिटीज ये प्रशासन की तरफ से रखी गई है, वहीं सिक्योरिटी के यहां कड़े इंतजाम हैं और न सिर्फ इस ट्रांजिट कैंप के अराउंड सिक्योरिटी यहां पे डिप्यूट है, बल्कि जहां से यात्री अमरनाथ जी गुफा तक जा रहे हैं जहां जहां पर भी ये ट्रांजिट कैंप से सारी जगहों पर अमरनाथ जी यात्रियों की हिफाजत के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और बाकी सिक्योरिटी जो एजेंसी के लोग हैं वो तैनात कर दिए गए और यहाँ इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से या इस मौसम के साथ साथ सिक्योरिटी और बाकी चैलेंजेस जो है या बाकी जो प्रॉब्लम्स है उनको देखने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसके अलावा लोक भवन से जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का जो मॉनिटरिंग सेल है वहां से भी अमरनाथ जी यात्रियों की सुरक्षा के लिए या इनकी बाकी असिस्टेंस के लिए यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि इनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के अभी जहां श्रीनगर में काफी तेज बारिश हो रही है, वहीं अच्छी खबर यह है कि यहां से अमरनाथ जी यात्रियों का एक जो कॉन्वे है, काफिला है, वो बालतल के लिए रवाना किया गया है।
0: जी, बालतल से भी हमारे पास यही रिपोर्ट्स हैं कि फिलहाल वहां आज सुबह एक काफिले को पवित्र गुफा की जानिब जाने की इजाजत दी गई। और इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम के हवाले से जो अपडेट्स हैं, मौसम कब तक सही होने के अनुमान जताए जा रहे हैं या मौसम विभाग की जानिब से क्या कुछ अलर्ट्स जारी किए गए हैं, क्या उनके हवाले से आपके पास कोई जानकारी है?
1: बिल्कुल, देखिए जैसे कि कंटिन्यूअसली जो वेदर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से मौसम को लेके वो बार बार अपडेट कर रहे हैं और जहां तक लेटेस्ट वेदर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहले से ये कहा गया था, ये जो प्रेडिक्शन दी गई थी कि 31 तारीख तक जो है मौसम में हल्की सी बारिश होंगी, लेकिन कल कहा गया है कि 2 अगस्त तक जो है जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में जो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की उन्होंने प्रिडिक्शन की है। अलबत्ता ये एडवाइजरी जरूर की गई है कि जो प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल जो है ये रहने की जो है एक्सपेक्टेशंस है और साथ ही फ्लैश फ्लड्स की भी उन्होंने प्रिडिक्शन दी है। अलबत्ता श्रीनगर और जो बाकी एरियाज है वहाँ ये बताया गया, मैदानी इलाके जिनको हम कहते हैं, कि वहाँ हल्की सी बारिशें होंगी। अलबत्ता कुछ जो जम्मू रीजन्स है वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकती है। फिलहाल श्रीनगर में इस वक्त बारिश तो तेज हो रही है, लेकिन जो हमारे पास इत्तला है कि बहुत सारे इलाकों में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा कि 2 अगस्त तक मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बीच में धूप होगी।

0: और साथ ही बारिशें होंगी।
1: जी
0: लेकिन इस सब के बीच में भी जिस तरह से यहाँ की जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी मैन एंड मशीनरी को एक्टिवेट किया है, न सिर्फ यात्रियों को लेकर बल्कि आम लोगों को लेकर भी किसी तरह की कोई लोगों को दिक्कत ना हो और किसी भी फ्लैश फ्लड या बाकी चैलेंज को निमटने के लिए सारी मैन एंड मशीनरी जो है वो ऑन ग्राउंड रखी गई है। और साथ साथ डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ये भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चाहे वो रीजनल लेवल पर उन एडवाइजरीज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए।
1: जी हम यही उम्मीद यही अपेक्षा रखते हैं कि मौसम में जल्दी से बेहतरी आए, और साथ में ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि ये जो मौसम है श्रावण का महीना, श्रावण का मौसम, इसमें ऐसी घटनाएं, ऐसी छुटपुट बारिशें या मौसम का मिजाज जो बदलने की प्रक्रिया होती है वो एक नेचुरल प्रक्रिया होती है और इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस तफसीली रिपोर्ट के लिए और आगे भी आपके साथ बात होती रहेगी। हमारे साथ हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ बात कर रहे थे, और जैसा कि इन्होंने भी बताया और हमने भी आपसे पहले बताया था कि जो बालतल का जो बेस कैंप है वहां से आज सुबह यात्रियों को पवित्र गुफा की जानिब जाने की इजाज़त दी गई, क्योंकि इतलात के मुताबिक इस इलाके में फ़िलहाल बारिशें नहीं हो रही हैं और जो मौसम है वो साफ बना हुआ है और जो हमारे पास अभी अभी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक जो यात्री पवित्र गुफा की जानिब रवाना किए गए हैं उनकी कुल तादाद आज अभी तक 8371 है, जिनमें 5534 पुरुष, 2511 महिलाएं, 45 बच्चे, 39 साधु, 29 साध्वीज और 5 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। इनके साथ साथ 208 सुरक्षा कर्मी भी इनकी सहायता के लिए इनके संग साथ इनके चल रहे हैं। ये वो यात्री हैं जिन्हें बालतल से पवित्र गुफा की जानिब भेजा गया आज सुबह से, और फिलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी रहेगा। आप इस प्रसारण का हिस्सा बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं मज़ीद अपडेट्स के साथ।

श्रोताओं, इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। ये वक्त होता है कि हम समाचार सुने। आइए, आकाशवाणी दिल्ली से हम सुने समाचार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में।

0: का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में 400

0: करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल चार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंदा के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
3: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविक

0: लोगों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
1: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Margo. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance from misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and setting

0: खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुरा भला कहने और नफरत से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने उन गुमराहकुन नौजवानों के तई हमदर्दी अख्तियार करने की अपील की है जो बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर और कौमी मफाद के जज्बे के सही रास्ते पर इन नौजवानों की रहनुमाई की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपने एक वीडियो पैगाम में, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया है, कौमी राजधानी में जंतर मंतर पर हालिया वाकये का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी आजहानी वालिदा के खिलाफ गालिम गलोच का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में तमाम लोगों और दुनिया भर ने इन वाकयात का नजारा किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे इस रवैये पर समाज में जो गुस्सा और मायूसी पाई जाती है वो बिल्कुल वाजह है, लेकिन बचपना सीखने, गलतियां करने और उनकी दुरुस्तगी का मरहला भी है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इम्तिहानात के 2026 के बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पार्लियामेंट में जुमेरात को मंजूरी दे दी गई थी। इस कानून का मकसद सख्त तर सजाएं मुकर्रर करके और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करके गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। इस बिल में इम्तिहान के निजाम में कानूनी फ्रेमवर्क के जरिए शफाफ और सही तौर तरीकों और दयानतदारी की बात कही गई है, ताकि बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ किया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में विजय नगरम जिले के भोगापुरम इलाके में अल्लूरी सीतारामा राजू बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी अपने दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, इनका इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 18,000 करोड़ रूपये की लागत आएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के शहर मैसूर में नौजवानों के स्वामी विवेकानंद सकाफती मरकज विवेकानंद स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। ये मकाम भारत के सबसे अजीम रूहानी रहनुमाओं में शामिल स्वामी विवेकानंद के तारीखी दौरे की यादगार है, जो उन्होंने 1982 में किया था जो उन्होंने 1892 में किया था। इस दौरे में वो मैसूर के दीवान सर के शेषाद्री अय्यर से मिले थे और उन्हें महाराजा श्री चमाराजेंद्रा वडियार के हाथों माली मदद हासिल हुई थी। ये माली मदद शिकागो में मजहबों की पार्लियामेंट में शिरकत के मकसद से अमरीका जाने के लिए दी गई थी। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: विवेक स्मारक का इफ्तिताह वजीर आजम के हाथों आज मैसूर में किया जाएगा। ये यादगारी मकाम स्वामी विवेकानंद की तालीमात और फलसफे को फरोग देने के लिए है। 75,300 मुरब्बा फुट के रकबे पर 4D तजर्बेगाह, नुमाइश हॉल, एम्फी थिएटर, क्लास रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और एक मेडिटेशन और योग हॉल कायम किया गया है। बेंगलुरु से सुधन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: मरकजी काबीना ने तौसीशुदा खेलो इंडिया स्कीम और कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशन ANSFS की इमदाद में इजाफे को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 2026-27 से 2030-31 तक इसके लिए मुश्तरका तौर पर 36,441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर में स्पोर्ट्स की ताकत को मनवाने के तई हुकूमत के अज़्म का इआदा होता है। उन्होंने कहा कि इससे सभी नौजवानों की सलाहियत को बेहतर से बेहतर बनाने और इसके लिए वाज़ह राह हमवार करने को यकीनी बनाया जा सकेगा। जनाब वैष्णव ने यह भी कहा कि इस स्कीम से पूरे मुल्क में समाज की बिल्कुल निचली सतह से टारगेट पोडियम ओलंपिक स्कीम की सतह तक हर तरबियती मरकज कायम करने में मदद मिलेगी। मगरबी बंगाल में आज से मर्दमशुमारी का अमल शुरू हो रहा है, जो दो मरहलों में डिजिटल तौर पर किया जाएगा। इस मशक का मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी नुक्ते नजर के जरिए अपडेट शुदा आबादियाती डेटा इकट्ठा करना है, जिसमें रियासत भर में जामे कवरेज को यकीनी बनाने के लिए दो मरहले के अमल को डिजाइन किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: पहले मरहले में मगरबी बंगाल के बाशिंदे मर्दमशुमारी के सरकारी पोर्टल के जरिए अपनी तफसीलात जमा करके आज से 15 अगस्त तक खुद की गिनती के अमल को ऑनलाइन तौर पर मुकम्मल कर सकते हैं। इसका दूसरा मरहला 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान मरदमशुमारी करने वाले अहलकार घरों की फहरिस्त और

0: 31 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। इनका ताल्लुक बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल, जरात, शहरी सहूलियात और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों से है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा की आलमी टीम, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर बंदिश लगाए जाने के बाद मरकज ने तलब किया है, उसने एल्गोरिदम के जरिए जानिबदारी अपनाए जाने और अवामी नज्म व नस्त में इसके रोल से मुतालिक मामलात पर पूछताछ की जाएगी। सरकारी जराए ने हमारे नामानिगार को बताया कि उम्मीद है कि मेटा की इस आलमी टीम से अगले हफ्ते के वस्त में किसी वक्त पूछताछ की जाएगी। मेटा से पूछा जाएगा कि उसका एल्गोरिदम किस तरह काम करता है और अवामी नज्म व नस्म में कंपनी का क्या रोल है। यह टीम एक पार्लियामानी कमेटी के सामने भी हाजिर होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर नए हमले की तैयारी का हुक्म दिया है। अमरीकी मीडिया ने अफसरों का नाम बताए बगैर अपनी रिपोर्टों में कहा है कि इस मुजव्वजा हमले का मकसद तेहरान पर खुदसुपुर्दगी के लिए दबाव कायम करना है। ये रिपोर्टें उस वक्त मंजरे आम पर आई हैं जब ट्रंप ने ईरान के साथ सिफारती बातचीत के मुस्तकबिल पर सवाल उठाए हैं और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले के बाद सख्त फौजी जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुई इस महाजराई से पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो गया है। ईरान ने बाद में अबनाए हुरमुज को बंद कर दिया, जिसे खाम तेल, कुदरती गैस और खाद की तरसील में रखना पैदा हुआ। दिल्ली सरकार ने अपनी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लाजमी इस्तेमाल की मुद्दत कार इस माह की 16 तारीख तक के लिए बढ़ा दी है। इस फैसले के तहत कंडक्टर 15 अगस्त तक पिंक टिकट फराहम करते रहेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया अब्दुल वाहिद। राजधानी दिल्ली से छाए होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप सिंह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाया किया है, जिसमें कहा गया है कि वह आज आंध्र प्रदेश में 17,900 करोड़ रूपये से ज्यादा के मुतादी तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो कर्नाटक के मैसूर में वाक श्री राम कृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सकाफती यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत के मुताबिक पेपर लीक के मुकदमात की समाअत अब नए मरहले में दाखिल हो गई है, जिसके सबब बरसों से अदालतों में जेर इल्तिवा मामलात में तेजी आएगी। नील इस तरह के सभी मामलों को फास्ट ट्रैक अदालत में मुंतकली की तैयारी की जा रही है। इस खबर पर रोजनामा इंकलाब ने तवज्जो मरकूज की है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी काबीना के जरिए प्रधानमंत्री सूर्या सरोवर योजना की मंजूरी की खबर को उजागर किया है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रूपये का बजट मुख्तस किया गया है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तई हमदर्दी और रहनुमाई अख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोज से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। सदर जमहूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्तर सजा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वजीर आजम आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खित्ते में जारी मुखासिमाना कार्रवाइयों पर तश्वीश जाहिर की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाजों और जहाजियों पर हमले से गुरेज करे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण, जिसे प्रसारित किया जा रहा है FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR की आराधना चैनल के साथ साथ DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज 30वां दिन है। आज यकुम अगस्त है और जो यात्रा है फिलहाल जारी है, जो बालतल का मार्ग है वहाँ से। और हम तक जो ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट पहुँचा है, उसके मुताबिक आज दिन के 8 बजे तक कुल मिलाकर 671 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर पावन शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जिनमें 480 पुरुष, 100 महिलाएं, 11 बच्चे और 80 सुरक्षाकर्मी इनके साथ शामिल थे। और इस रास्ते के हवाले से हमने खबरों से पहले बात की थी कि ये वाला जो इलाका है, इस इलाके में मौसम फ़िलहाल ठीक है और यात्रा जो है सुरक्षित तरीके से, सुगम तरीके से जारी है। और साथ ही में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जम्मू से आज फ़िलहाल जो हमारे पास अपडेट्स हैं, वहाँ से जम्मू से आज किसी भी यात्री गाड़ी को, यात्री काफिले को

श्रीनगर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि सड़क पर फिसलन है, सड़क पर कई जगह भूस्खलन हुआ है जिसको साफ करने और सड़क को बहाल करने का काम शदोमद से जारी है। और जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके कर्मचारी अपनी मशीनरी के साथ इस काम में लगे हुए हैं। और यात्रा के हवाले से अगर आप कोई अपडेट हासिल करना चाहते हैं, कोई सवाल कोई सुझाव आपका है तो आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स जो श्रीनगर और जम्मू के लिए अलग अलग से टोल फ्री नंबर्स इजरा किए गए हैं उन पर राबिता करके कोई भी सवाल आप प्रशासन से पूछ सकते हैं। श्रीनगर के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर नोट करें 1800 180 7199 और जम्मू के लिए ऐसा ही एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 7198। जी हाँ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए।

0: जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। और इस प्रसारण की जो आगाज होता है, आगमन होता है, इसमें हम घाटी में मौजूद हमारे विभिन्न संवाददाताओं से बात करते हैं, उनसे ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स, ताज़ा तरीन अपडेट्स यात्रा के हवाले से हासिल करते हैं। फिलहाल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे पहलगाम के संवाददाता एस तारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस प्रसारण में। तारिक साहब, आप तक हमारी बात पहुंच रही है? लगता है कि तारिक साहब के साथ हमारा राबिता मुनकता हुआ है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे इनके साथ बात करने की। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़ी रहिए इस विशेष प्रसारण के साथ। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यात्रा जो है आज केवल बालतल मार्ग से जारी है, और जो पहलगाम का मार्ग है वहाँ से यात्रा फिलहाल बंद है, क्योंकि पहलगाम में भी इस वक्त बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं। जैसा कि पूरी घाटी में इस वक्त हम इतराते हैं कि पूरी घाटी में इस वक्त बारिशें हो रही हैं। तारिक साहब, आपका खैर मकदम है इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया इकबाल
0: जी, बताइए कैसा है मौसम बालतल में? हमने सुना खबरों में कि यात्रा जो है बालतल मार्ग से फिलहाल बाधित है और वहां पे बारिशें हो रही हैं। क्या है आपके पास और अपडेट्स?
1: जी इकबाल जी, मैं सबसे पहले अपने विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को सुप्रभात कहता हूं, और 57 दिन तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज 29 दिन पूरे हो गए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा और ऊंचाई वाले क्षेत्र में आज मौसम आमतौर पर अब आलूद रहने की साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है, बल्कि पहलगाम से पवित्र गुफा तक जो ये मार्ग है, रोड है, इस पर भी इस समय वर्षा का सिलसिला जारी है, जबकि पूरा जिला के अनेक स्थानों पर भी बारिशें हो रही है
0: जी।
1: आज दर्जे हरारत की बात करें तो दर्जे हरारत कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस और जो दिन तक बढ़ता 14 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान है
0: जी।
1: हवा में नमी की मात्रा लगभग 99% है और हल्की गति से पवन चलने की संभावना भी है। इधर शिशनाग, माँ गुनस्ता, पंचतरणी और श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा सीमा सभी ऊंचाई वाले क्षेत्र में नमी से भरपूर और दुर्गम मौसमी स्थितियां बनी हुई है, तो घनी धुंध के कारण इन स्थितियों पर स्थानों पर दृष्टिया में भी कमी आ सकती है
0: जी।
1: तो भारतीय मौसम विभाग जो विज्ञान विभाग है उनके अनुसार दोपहर के समय गरज चमक के साथ वर्षा और बूंदाबांदी की संभावना अधिक है। वक्फे से हो रही बारिशों का कारण यात्रा मार्ग फिसलन भरा हो सकता है, इसलिए सभी संबोधित विभागों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है।

0: जब भी ये बात मैं कह रहा हूँ, जो पहलगाम से लेके पवित्र गुफा तक के जो मार्ग है इसकी बात कर रहा हूँ, जबकि बालतल के जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो कदरे बेहतर है। तो खराब मौसमी जो स्थिति है या दीगर वो जो रामबंद के जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो रोड रिपेयरिंग के कारण आज गुज़श्ता रात के भारी वर्षा और यात्रा ट्रैक पर जारी मरम्मत के कार्य के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी यात्रा को फिलहाल जो रिवायती रोड पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों पर आरजी रूप से निलंबित रखा गया है। आज जम्मू की भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी यात्री के जत्थे को घाटी आने की अनुमति नहीं दी गई। अलबत्त बालतल आधार शिविर से 8,000 से जायद श्रद्धालु आज सुबह बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गए हैं। तो प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार आने और यात्रा मार्ग से सुरक्षित घोषित किए जाने तक किसी भी आधार शिविर से श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ इसमें बालतल को आज अनुमति मिल गई है क्योंकि बालतल का जो रास्ता है वो कदरे बेहतर है।
1: जी,
0: 57 दिनों की यात्रा के आरंभ से अब तक जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल जो संख्या की अगर बात करें तो लगभग 4.5 लाख तक पहुंच गई है।
1: जी,
0: तो इधर पहलगाम दुनवाल आधार शिविर शिशनाग और पंचतरणी शिविरों में इस समय कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं है। तमाम यात्रा मार्ग और सभी आधार शिविरों पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा सुरक्षा और आवश्यक सहूलियत की फराहमी के जो पूरे निष्ठा के साथ तैनात है। तो हम यही कहेंगे कि हम आशा करते हैं कि बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो और उनकी यात्रा सुखद सुरक्षित और मंगलमय साबित हो।
1: जी, हमारी भी यही कामना रहती है और खुशी इस बात की होती है कि आपने जैसा बताया कि 4.5 लाख से जायद जो यात्री है वो आए और उन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। उनका एक्सपीरियंस और उनका ये जो यहाँ आना और हमें उनकी सेवा करने का जो मौका मिला है ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम इस बात से खुश हैं कि हम इस प्रसारण का हिस्सा है और इस पूरे घटनाक्रम का ये जो यात्रा का क्रम होता है इसका एक हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं और अपने यात्रियों तक अपने मेहमानों तक ताज़ा तरीन जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपने जो जानकारी दी उसके मुताबिक यही कहना चाहेंगे कि यात्रा जो पहलगाम का मार्ग है वहाँ से आज बंद है और फिलहाल मौसम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वहाँ से किसी भी यात्री को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए। आपसे आगे भी बात होती रहेगी, फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। हमारे पहलगाम के संवाददाता एस तारिक हमारे साथ बात कर रहे थे और जैसा कि हमने बताया, इन्होंने बताया कि आज केवल बालतल मार्ग से यात्रा जारी है क्योंकि बालतल मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ से मौसम फिलहाल ठीक है और 8,000 से जायद जो यात्री है उनको आज पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन करने का अवसर प्रदान होगा। और हमने जो आपको आखिरी दर्शन रिपोर्ट दिया था उसके मुताबिक आज दिन के 8 बजे तक कुल मिलाकर 671 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें 480 पुरुष, 100 महिलाएं, 11 बच्चे और 80 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। और प्रशासन एक नज़र रखे हुए है, जो ज़िला प्रशासन है वो इंतज़ाम का जायज़ा ले रहे हैं, श्राइन बोर्ड जो है वो इंतज़ाम पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और हर एक जो भी इस यात्रा से जुड़ा हुआ इंसान है, चाहे वो बड़े से बड़ा अफसर हो या छोटे से छोटा कर्मचारी, वो अपना काम जो है बखूबी निभा रहे हैं, बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस सारे घटनाक्रम पर खुद ही एक नज़र रखे हुए हैं और मुख्तलिफ जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो HMT में है उसकी बात करें या जो मुख्तलिफ श्राइन बोर्ड्स के जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ से इस पूरे यात्रा पर एक नज़र रखी जा रही है। और 4,50,000 से जायद जो यात्री आज तक आए, हमें किसी बड़ी शिकायत का अनुभव नहीं हुआ, हम तक कोई ऐसी बड़ी शिकायत नहीं पहुंची। हालांकि छुटपुट घटनाएं या छुटपुट शिकायतें वो तो होती रहती हैं, खाने पीने की चीज़ें हों, सुरक्षा चिकित्सा की छोटी मोटी

जो शिकायतें हैं वो तो आती रहती हैं, लेकिन हमने ऐसी कोई बड़ी घटना या कोई बड़ी ऐसी शिकायत नहीं सुनी जिसकी वजह से ये कहना पड़े कि हमने इंतज़ाम में कोई कमी छोड़ी थी। और आगे भी जब तक ये यात्रा जारी है, आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि किसी भी यात्री को, किसी भी मेहमान को किसी किस्म का कोई कष्ट ना हो, और जो उनकी कामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, जो अपेक्षाएं, उम्मीदें लेकर वो आए हैं यात्रा के लिए, उनकी वो सारी अपेक्षाएं, उम्मीदें वो पूरी हों, और हमें उनका उनकी मेहमान नवाजी, उनकी खिदमत का एक मौका मैसर हो। फिलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है और हमारी जो हमारे संवाददाताओं से बात करने का सिलसिला है वो भी जारी है। अभी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे गांधरबल के संवाददाता हैं रहीम रिजवान, उनसे जुड़ने की, जैसा ही हमारा उनके साथ कांटेक्ट होता है हम उनसे आज का ताज़ा तरीन रिपोर्ट सुनने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण जारी है और हमारा सिलसिला हमारे संवाददाताओं से बात करने का भी जारी है। फिलहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे गांधरबल के संवाददाता रहीम रिजवान। रिजवान साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
0: जी, हमने ये अच्छी खबर सुनी कि जो बालतल मार्ग है वहां से यात्रा जारी है और 8000 से ज्यादा यात्रियों को पवित्र गुफा की जानिब जाने की इजाजत दी गई, और इससे हमने ये भी अंदाजा लगाया कि जो इस क्षेत्र का मौसम है वो फिलहाल सही बना हुआ है और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे भी मौसम की कृपा हम पर बनी रहे और पूरी घाटी में जो मौसम का जो तंत्र है इसकी जो इस वक्त बनी हुई है सिचुएशन उस पर ऊपर वाले की कृपा हो और हमें मौसम में सफाई जल्दी देखने को मिले। फिलहाल आपके पास क्या हैं ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स, आपके जो वहाँ पे ट्रांजिट कैंप्स हैं वहाँ का माहौल कैसा है और इस वक्त बालतल का माहौल कैसा है?
1: बालतल के पूरे क्षेत्र में सुबह सवेरे हल्की हल्की वर्षा हो रही है। हम अपने श्रोताओं को बार बार ये बताते हैं कि यहाँ का वातावरण जो है, यहाँ का मौसम है बिल्कुल अजीब सा है। बीच में वर्षा भी होती है, धूप भी खिलती है, तो यहाँ का मौसम बदलता रहता है। तो आज सुबह 3 बजे से हल्की हल्की वर्षा हो रही है, लेकिन वर्षा के कारण जो यात्रा ट्रैक है उस पर निश्चित तो जो फिसलन है वो पैदा होती है। इसी के कारण बीते दिन जो यात्रा है उसको अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है ताकि यात्रा ट्रैक जो है उसकी सफाई सुथराई की जाए और उसको काबिल आमद रफ्त बनाया जाए। तो इसलिए कल जो यात्रा है किसी भी यात्री को बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान जो यात्री थे उन्होंने रात भर विश्राम किया है बालतल बेस कैंप में, उनके लिए तमाम सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रखी गई हैं। तो आज जम्मू से किसी भी यात्री को घाटी आगमन होने की अनुमति नहीं दी गई। अलबत्ता जो यात्री यहाँ बालतल बेस कैंप पहुंचे हैं या ट्रांजिट कैंप शादीपोरा या ट्रांजिट कैंप बनगा में रात भर कायम बजे थे, उन यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आज सुबह सवेरे 2 बजे से ही यात्री दुमेल कंट्रोल गेट पर जमा होते हैं और 3 बजे अपनी अपनी लाइनों में वो खड़ा रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब उन्हें पवित्र गुफा की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी। इस तरह सुबह 4 बजे आज 8371 यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया गया। बम बोले हर हर महादेव का पवित्र नाद करते हैं यात्री जोश और जज्बे के साथ ऊंचे पर्वतों के बीच पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जिन यात्रियों ने दुमेल कंट्रोल गेट आज सुबह सवेरे पार किया उनमें 5534 पुरुष, 2511 महिलाएं, 45 बालक बालिका, 39 साधु, 29 साधवी, 6 ट्रांसजेंडर एवं 200 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी शामिल हैं। तो प्रशासन ने इन यात्रियों के लिए यात्रा रूट के हर पड़ाव पर, अगरचे बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक का रास्ता जो है 14 किलोमीटर का रास्ता इनको तय करना पड़ता है, कठिन रास्ता माना जाता है, फिर भी हर पड़ाव पर तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध रखी गई है। खासकर अगर हम चिकित्सा विभाग की बात करेंगे तो इन पर्वत के बीच सफर करने से अक्सर यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो वो कमी महसूस करने के लिए उन्होंने हर पड़ाव पर चिकित्सा केंद्र कायम किए हैं जहां यात्रियों के लिए वाफिर मकदार में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो दस्तियाब रखे गए हैं। जहां भी उन्हें ऑक्सीजन की कमी लाहक हो या महसूस हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहां फराहम किए

0: जाते हैं। इस तरह यात्री जो है वो अपना ये पवित्र सफर जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं शिवलिंगम की ओर और यहाँ माथा टेक कर दर्शन करके वापस सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें मुख्तलिफ वाहनों में जम्मू भगवती नगर की तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया जाता है। और अपने श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहते हैं कि वो बाजाबता तौर जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें और कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है, यहाँ का वातावरण जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि सफर के दौरान उन्हें लाठी, रेन कोट, गर्म कपड़े, जूते, गर्म एक किस्म के जूते, यानी ऐसे जूते जो वो पहन सकते हैं पहाड़ सफर के दौरान, वो साथ रखना ना भूलें। पानी की बोतलें और अन्य व्यवस्थाएं जो है वो भी साथ रखें, तो इस तरह वो आसानी से सफर करें। क्योंकि उनके लिए किसी भी सूरत हाल से, अगर बारिशें वर्षा होगी या कोई भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो, तो इससे निमटने के लिए उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वॉलंटियर्स और जिला प्रशासन के मुख्तलिफ विभागों के अधिकारी डाकू जो बंद रखे गए हैं वो मुतहरिक है इस वक्त बालतल से पवित्र गुफा तक, उनकी सहायता के लिए तैयार है। तो बालतल के क्षेत्र से अगर हम बात करेंगे, बालतल मुख्य मार्ग से जो तीर्थ यात्रा है वो सुचारू रूप से जारी है और यात्री जो है वो पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और दर्शन करके देश एवं घाटी तथा के लिए जो प्रार्थना है वो करते हैं और दुआएं भी मांगते रहते हैं।
1: जी, जैसा कि आपने बताया कि 8371 यात्रियों को पवित्र गुफा की जानिब जाने की आज अनुमति दी गई। ये यात्री कब से वहां रुके हुए थे या ये यात्री कब वहां पहुंचे?
0: दरअसल इनमें से दो दिन पहले भी दो चार यात्रियों से हमने बात भी की, तो उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि वो 20 तारीख को यहाँ पहुंचे, लेकिन बीच में कहीं उनको रुकना पड़ा, श्रीनगर में भी और भी काम था। और यहाँ वो देखकर, यहाँ का वातावरण, यहाँ की सुंदरता देखकर ये यात्री यहाँ रुकते हैं और यहाँ की सुंदरता देखकर जो मुड़ते हैं और उनका दिल करता है कि वो यहीं रुके, क्योंकि उनको पता ये है कि बालतल बेस कैंप में जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रखी गई हैं, भोजन की, गर्म पानी वगैरह जो है, अलबत्ता इसमें टेंट जो है उसके लिए उनको पे करना पड़ता है, बाकी जितने भी सुविधाएं हैं वो मुफ्त रखी हैं उनके लिए यहाँ पे। लिहाजा वो दर्शन करके ऐसे यात्री भी हैं जो दो तीन दिन और रुकते हैं यहाँ पे, और इससे पहले जो आते हैं जिनकी अभी बारी नहीं है, यानी उनकी उन्होंने जो पंजीकरण किया है वो जम्मू में या और किसी जगह की या पंजाब में करते हैं, तो वो बाद में उनकी अगर आज उनको
1: सीरियल उनका
0: उनका ड्यू डेट आज है तो वो इससे पहले ही दो दिन यहाँ पहुंचते हैं, लिहाजा वो दो दिन यहाँ रुकते हैं, घूमते हैं इधर उधर, यहाँ के पुरफजा माहौल का जो है उसका लुत्फ उठाते हैं। तो ये खूबसूरती देखकर वो खुश होते हैं, उन्होंने बार बार आकाशवाणी को बताया कि वो मिस करते हैं कश्मीर की इस सुंदरता को, इस खूबसूरती को, और वो यादें लेकर वापस यहाँ जाते हैं। लिहाजा यही वो यात्री हैं जो पांच दिन पहले यहाँ पहुंचे हैं, तीन दिन पहले पहुंचे हैं, अभी उनकी बारी नहीं थी, तो अब बारी आ गई है तो अपनी बारी पे उन्हें पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाता है।
1: जी, ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है कि जैसा आपने बताया कि कुछ एक यात्रियों से हमारी बात हुई और वो यहाँ की सुंदरता, यहाँ की मेहमान नवाजी और हमारे जो भी इंतजामात हैं उनके लिए, उनसे बहुत खुश हैं। और इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है पूरी दुनिया को, क्योंकि ये ट्रांसमिशन, आपकी बातें, आपका जो फीडबैक आपको मिलता है, यात्रियों का फीडबैक, इसको पूरी दुनिया सुनते हैं, इसको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और एक अच्छा फीडबैक जाता है और इससे हमें हौसला मिलता है, हमें तरगीब मिलती है कि जो हमने इंतजामात किए हैं वो किसी को पसंद आए और जो प्रशासन है उनको भी आगे इसका रोड मैप दिखता है कि हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है और हमने क्या कुछ इसमें मिस किया, क्या कुछ लैग किया। हालांकि जो कुछ हुआ है आज तक जो आज यात्रा का 30वां दिन है, आज तक जो कुछ हुआ, हमने पहले भी इस बारे में बात की कि आज तक किसी भी ऐसी घटना की हमें कोई खबर नहीं है जिसमें किसी यात्री ने कोई किस्म की शिकायत की हो। हालांकि जो, जैसा कि आपने बताया कि जो बालतल का बेस कैंप है वहां पर सिर्फ यात्रियों को जो टेंट का जो रेंट है वो पे करना पड़ता है, बाकी उनको हर एक सुविधा वहां पे, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चिकित्सा की सुविधाएं हों या कोई भी उनको वहां पे सुविधाएं, उनके लिए बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता है और वो इस माहौल का, इस फिज़ा का आनंद है वो लेने के बड़े

0: दत्तू इसके लिए रेट इज मुकर्रर
1: बिल्कुल
0: किए हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो उससे ज्यादा वो एक पैसा नहीं ले सकते क्योंकि वहां जो सुरक्षा कर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनकी नजर बनी हुई है, चाकू चौबंद रखे गए हैं अप्सरा वहां पे, उनसे हमने बात की है, बहुत सारे यात्रियों से बात की है कि कहीं आपको ज्यादा रेट जो है इजाफी वो नहीं लिया जाता है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार किया। वो बल्कि ये कहा कि हम इनके शुक्र गुजार हैं कि किस तरह ये मेहनत करते हैं और हमें वहां तक पहुंचाते हैं, और इसमें अगर यात्रा जो आज जारी है इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के मकामी लोगों का है,
1: जी बिल्कुल
0: चाहे वो गांधरबल के रहने वाले हो, दीगर अजला के से आए हो यहाँ अपना काम करने के लिए, और इसके साथ साथ हमने वहाँ जो जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगाई हैं, बहुत सारे कपड़े वाले हैं, उनसे बात की है, वो हमें सोशल मीडिया पे वायरल किया वो वीडियोस, और उन्होंने बताया कि हमने अच्छी तरीके से बिक्री की है यहाँ पे, और इस तरह का वातावरण इस माहौल में बिल्कुल मुकर्रर जो रेट रखे हैं, तो आसानी से ये हम चाहते हैं कि ये यात्रा 57 रोज जारी रहे ताकि उनकी आमदनी में भी इजाफा हो, और साथ ही जो वो उख़वत भाईचारा और यहाँ सदियों से चली आई रिवायत को बरकरार रखते हुए यहाँ की मेहमान नवाजी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि एक पॉजिटिव मैसेज आए पूरे देश में कि यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का भाईचारा कैसा है, और जो हमारे असलाफों ने हमें
1: तरबियत दी है, जी बिल्कुल
0: बिल्कुल में दिया है, उसको हम कभी भूलेंगे नहीं, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल, इससे हमारी जो छाती है वो चौड़ी होती है, जैसा कि आपने कमेंट्स किए, जैसे कि आपने हमें बताया कि जो लोकल्स का कंट्रीब्यूशन इस पूरी यात्रा को चलाने में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से तो हम लोगों को नहीं लाते हैं अपनी यात्रियों की सुरक्षा के लिए, अपनी उनकी खिदमत के लिए, उनकी सहायता के लिए, ये हम ही हैं जो हम में से लोग निकलते हैं वहाँ पे अपना काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, या जो सरकारी कारिंदे होते हैं, सरकारी विभागों के बहुत सारे एहलकार होते हैं, लेकिन होते तो सब कश्मीरी ही हैं, और इस सब से हमारा सीना चौड़ा होता है कि हमें ये अवसर मिलता है हर एक साल, और हम इस अवसर में, इस कोशिश में कामयाब होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए, और आगे भी आपसे बात होती रहेगी।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हमारे साथ हमारे गांधरबल के संवाददाता रहीम रिजवान बात कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है जब बात कश्मीरियत की आती है, बात कश्मीरी मेहमान नवाजी की आती है, और इन्होंने इसमें एक बात ये भी ऐड की कि हमने बहुत सारे रेड़ी पटरी वाले या दुकानदारों से बात की, जिन्होंने ये बताया कि जी नहीं, हम यात्रियों को अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं, अच्छी कीमतों पर बेचते हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि यात्रा पूरे दिन, पूरे 53 दिन चले, और हमारी आमदनी में इजाफा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करें, और ख़ास तौर पर ये मैसेज जाए, ये बाहर वो प्रोडक्ट जाए जिसको देखकर बाहर के लोगों का मन मचल जाए, और वो इस प्रोडक्ट को या दीगर जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स या हम बाकी जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं यहाँ पर, उनको ख़रीदने की उनके दिलों में एक आस जग जाए, एक शौक पैदा हो जाए, और इस इन सब चीज़ों से एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है फिलहाल, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हम इस कोशिश में आगे भी कामयाब होते रहें। और फिलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी रहेगा, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026, जिसे आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल, DTH और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हमारे साथ बने रहिए।

श्रोताओं, सुबह के 9:25 हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से आप खबरें सुनेंगे उर्दू में। खबरों के लिए ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं उमर मुख्तार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि गुजशत 6 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में हो रही मस्बत तब्दीली अवाम एतमाद की बहाली और शहरियों को अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने के मौके फराहम करने का नतीजा है। वो कल लोक भवन में आर्मी वॉर कॉलेज महू के हायर कमांड कोर्स 55 में शिरकत करने वाले अफसरान और फैकल्टी मेम्बरान से खताब कर रहे थे। LG ने कहा कि दहशतगर्दी के माहौलती निजाम और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए काम करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि फौज को गैर रवायती जंग के चैलेंजों से निमटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम में दहशतगर्दों के हमले में छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले मजदूर की हलाकत की शदीद मजम्मत करते हुए इसे एक बुजदिलाना हरकत करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने कहा कि उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात और दीगर आला सिक्योरिटी हुकाम से बात करके उन्हें दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने और कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत दी है। उन्होंने मुतासर कुंभे के साथ ताजियत और यकजहती का इजहार किया। इधर जम्मू कश्मीर कानूनसाज असेंबली में कायदे हिजब सुनील शर्मा, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी के सरबरा सईद अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने भी इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मारूफ फिल्मसाज सुधारत काक ने लोक भवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के तारीखी विरसे, आसार कदीमा और सकाफती मकामात के फरूग और उन्हें सियाहती एतबार से मजीद मुआसर अंदाज में तरक्की देने से मुतलिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। दरअसल जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में हिजब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा बिलावर हल्के से रुकने असेंबली सतीश शर्मा भी मौजूद थे। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को माली साल 2030-31 तक तौसी देने को मंजूरी दी है। 5 वर्षों के दौरान स्कीम की अमलावरी के लिए 3.15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने ई-उन्नत पोर्टल पर 162 नई ऑनलाइन अवामी खिदमात का आगाज किया, जिसके बाद पोर्टल पर दस्तियाब सरकार

जी श्रोताओं, वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी है और आज यात्रा का 30वां दिन है। बीच बीच में हमें ये देखने को मिला कि यात्रा को किसी कारणवश, हालांकि अगर हम ये कहें कि मौसम की खराबी की वजह से बीच में रुकना पड़ा, बीच में रोकना पड़ा, या यात्रियों को कई एक दिनों तक जम्मू के जो भगवती नगर का बेस कैंप है वहाँ पर रुकना पड़ा, यहाँ के जो मुख्तलिफ बेस कैंप्स हैं कश्मीर घाटी में वहाँ रुकना पड़ा, लेकिन जो सुविधाएं हैं जो हमने कर रखी हैं उनके लिए, उनमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आया, किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई।

इसी बीच लाखों श्रद्धालु ने, या यूँ कहें कि आज तक की डेट में 4.5 लाख से ज़ायद जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं और उन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। और हमारे पास जो ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आया उसके मुताबिक सुबह के 9 बजे तक 1857 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे और ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ेगा क्योंकि आज सुबह 8371 यात्रियों को रवाना करने के का सुझाव जो है या रवाना कर दिया गया है पवित्र गुफा की जानिब। और बालतल मार्ग से ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि बाकी जो पहलगाम का मार्ग है उस मार्ग पर फ़िलहाल बारिशें हो रही हैं और वहाँ से यात्रा पर जाना मुमकिन नहीं हो पाया है, इसलिए प्रशासन ने वहाँ से जो यात्रियों का जाने का सिलसिला है उसको फ़िलहाल के लिए रोका है। पूरी घाटी में इस वक्त बारिश हो रही है। इस वक्त श्रीनगर की हमने बात की, जम्मू में भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिशें हो रही हैं और हमने अपने विभिन्न संवाददाताओं से भी बात की और मुख्तलिफ जो इलाके हैं, चाहे वो हमारा गांधरबल का इलाका हो, श्रीनगर के जो हमारे संवाददाता हैं उनके साथ हमने बात की, या जम्मू से हमारे संवाददाता ने हमारे साथ बात की, रामबन से जो हमारे संवाददाता हैं हमें नेशनल हाईवे का हाल बताते हैं और पूरी जो घटनाक्रम है आज का उसके हवाले से हम बात करते हैं। और पूरा जो उनके रिपोर्ट्स हैं वो सुनकर हमें यही लगा कि फ़िलहाल यात्रा मौसम के हवाले से बहुत ही बुरे दौर में से गुज़र रही है और हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि मौसम में जल्दी से बदलाव आए और यात्रा फिर से शुरू हो जाए ताकि जो श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हैं लोग, चाहे वो आम लोग हों या यात्री हों, वो भी अपने अपने घरों को पहुँचे, अपने अपने ठिकानों पर पहुँचे, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये एक वाहिद रास्ता है, एक अकेला रास्ता है हमें पूरी दुनिया से या अपने मुल्क से जोड़ने का। और इस पर फ़िलहाल जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हैवी मशीनरी इस वक्त वहाँ पे काम कर रही है और कोशिश यही है कि जो यात्रा है वो फिर से शुरू हो और जो आम लोग हैं उनको भी आने जाने में किसी किस्म का कोई कष्ट, कोई परेशानी ना हो।

यात्रा को जो है रोकने का एकमात्र उद्देश्य ही होता है कि यात्रीगणों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रखा जाए और उन्हें एक सुरक्षित महसूस कराया जाए, उन्हें किसी कारणवश भी कोई कठिनाई ना उठानी पड़े। प्रशासन के द्वारा उठाए गए जो कदम होते हैं या उन श्रद्धालुओं में एक एक तरह का जो है उनका मन बहलाने के लिए ये सब किया जाता है। उन्हें बाजारों में घूमने का अवसर दिया जाता है, उन्हें कश्मीर की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको एक्सप्लोर करने का एक अवसर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका दिल लगता है। और खाने पीने की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो उनको एंजॉय करते हैं। मुख्तलिफ़ जो प्राइवेट होटल्स हैं या जो मुख्तलिफ़ जगहों पर लंगर लगे हुए हैं, हालांकि पेमेंट किसी यात्री को कहीं पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये सारा जो इंतज़ाम है, ये सारा जो व्यवस्था की जाती है, ये यात्रियों के लिए की जाती है। और हम इस व्यवस्था को, इन इंतज़ामात को आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे और आपके आने की हम उपेक्षा, उम्मीद और इंतज़ार करते रहेंगे, और यही उम्मीद रखेंगे कि मौसम जल्दी से ठीक हो जाए और ये यात्रा फिर से शुरू हो जाए।

जी श्रोता, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल, DTH तथा हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। 8371 यात्रियों को आज बालतल मार्ग से बाबा बर्फानी की गुफा की जानिब रवाना किया गया, जिनमें से आज ताज़ा खबरें मिलने तक 1857 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए और अब वो अपनी वापसी के रास्ते पर आ रहे हैं। इनमें से 1305 पुरुष, 415 महिलाएं, 19 बच्चे, 3 साधु और 115 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। और सुरक्षा कर्मियों के इन यात्रियों के साथ शामिल होने का उद्देश्य मकसद सिर्फ एक ही है कि इन यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि रास्ता कठिन है, रास्ता ख़राब है, मौसम ख़राब है और इस रास्ते पर फिसलन या रास्ता फिसलन भरा होने के जो अंदेशे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और इसमें इन सुरक्षा कर्मियों की सहायता से इन यात्रियों को बहुत आराम होता है, इनको बहुत आसानी होती है आने जाने में, चढ़ने में। और हमने वीडियोज़ में, काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी देखा है कि ये सुरक्षाकर्मी किस हद तक इन यात्रियों की मदद करते हैं, हर एक जगह पर इनका मार्गदर्शन करते हैं और इनको समझाते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और साथ में ही यात्रियों पर भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी चिकित्सा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अगर किसी भी यात्री को अपनी चिकित्सा, स्वास्थ्य से संबंधित कोई शिकायत हो, कोई परेशानी हो, वो बिना संकोच किए हुए किसी से भी कह सकता है, क्योंकि इस रास्ते पर कई जगह चिकित्सा के जो टेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जहाँ पर इन यात्रियों की जो सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा, उसको मद्देनज़र रखा गया है। और इस इलाके में ख़ास तौर पर हमने ये महसूस किया है कि ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है कई यात्रियों की, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफ़ी मात्रा इस इलाके में इन चिकित्सा सेंटरों पर उपलब्ध है और उसका फ़ायदा उठाकर यात्री अपनी जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बराबर कर सकते हैं। और साथ ही में जो खाने पीने के इंतज़ाम हैं, वो तो हम पहले यात्रियों से निवेदन करते रहते हैं कि आप अपने साथ अपने जो आपका बैग होता है उसमें छोटा मोटा सा खाने पीने का कोई सामान ज़रूर रखें, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी थका देने वाला है, ये रास्ता काफ़ी कठिन है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल और हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स के अलावा डीटीएच के विभिन्न चैनलों पर भी ये प्रसारण उपलब्ध है। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का

तीसवां दिन है, बालतल मार्ग से यात्रा बंद है, लेकिन माफ कीजिएगा, पहलगाम मार्ग से यात्रा बंद है लेकिन बालतल मार्ग से यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से जारी है। और हमारे पास इत्तला पहुंच रही हैं कि यात्रा बिलहाल सुचारू रूप से जारी है और रास्ते पे थोड़ी सी फिसलन है क्योंकि हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में हो रही है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए यात्रा को रोकना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी घटना की कोई खबर नहीं है और यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से जारी है। जैसे ही हमारे पास ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आता है, हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना चैनल और न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर। आज सुबह 8371 यात्रियों को बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की जाने की इजाज़त दी गई, अनुमति दी गई और इनमें से अभी ताज़ा तरीन अपडेट जो हमारे पास आया है उसके मुताबिक 3273 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें 2174 पुरुष, 935 महिलाएं, 23 बच्चे और 11 साधुओं के साथ साथ 130 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। जी हाँ, 3273 यात्रियों की संख्या पहुंच चुकी है जिन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। आपको ये भी बता दें कि आज सिर्फ बालतल मार्ग से इन यात्रियों को जाने की इजाज़त है, क्योंकि पहलगाम मार्ग से या

पूरी घाटी की हम अगर बात करें या जम्मू रीजन की हम बात करें तो मौसम सब जगह ख़राब है, और प्रशासन ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि बालतल मार्ग से जो मौसम का हाल है वो यात्रा करवाने के लायक उचित था, इसलिए इन 8,371 यात्रियों को पवित्र गुफा की जानब जाने की इजाज़त दी गई और ये शिवलिंगम के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। और रास्ते में इन यात्रियों को ध्यान रखना पड़ता है अपना अपनी सेहत का, क्योंकि इनकी सेहत जब तक सही नहीं रहेगी ये यात्रा सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यात्रा के दौरान आपको लगातार पानी पीने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि सफ़र लंबा है, सफ़र बहुत दूर है। और इस बारे में हम और भी बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

जी श्रोताओं, हम बात कर रहे थे जो यात्रा मार्ग है, यात्रा का रास्ता है, इसमें इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप

0: को ध्यान रखना है कि अगर आप को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो आप नज़दीकी चिकित्सा केंद्र से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सरदर्द हो रहा है, क्योंकि इस इलाके में सरदर्द होना आम बात है, और सरदर्द का इलाज ये है कि आपको ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको प्यास नहीं भी है फिर भी आप छोटे छोटे सिप्स में पानी की घूंट कंटिन्यू लगातार पानी की घूंट लेते रहें, उससे आपको सरदर्द में काफ़ी आराम मिल सकता है। क्योंकि इस इलाके में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो डायरेक्ट आपके जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के उतार या चढ़ाव का अंदेशा रहता है। और ख़ास तौर पर इस इलाके में आपको आपका जो आपकी जो त्वचा है चेहरे की, उस पे असर पड़ सकता है। क्योंकि मौसम चेंज होता है, आप एक माहौल से आते हैं दूसरे माहौल में जाते हैं और आपको अडॉप्ट करने में इस माहौल को काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने साथ एक सनस्क्रीन रखनी है या कोई ऐसा क्रीम रखना है जो आप घर पे यूज़ करते हैं या आपको आपके आपकी त्वचा के लिए सही रहती है। और जो है इन पहाड़ों में जब इन रास्तों में जब बारिशें होती हैं तो वहाँ फिसलन होती है, और इन सब चीज़ों से खुदा न खास्ता आपको परेशानियों का सामना हो सकता है। और आपको चाहिए कि एक एंटी स्लिपरी जूता आप अपने साथ रखें और पहन कर जाएं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपका पैर फिसल गया तो आपको इंजरी हो सकती है, आप गिर सकते हैं। इसलिए आप एक एंटी स्लिपरी जूता रखें और अपने साथ चंद कपड़े ऐसे रखें जो आपको ज़्यादा सर्दी में काम आए, क्योंकि हो सकता है कि इस इलाके का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो और आपको सर्दी की आदत ना हो, और तो आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। और आप जब खाने पीने का कोई सामान इस्तेमाल करते हैं, उसका जो रैपर होता है, उसका कवर या पानी की बोटल्स होती हैं, उनको आप कृपया करके ऐसे ही रास्ते पे ना डालें, ना छोड़ें, क्योंकि सफाई का भी आपको इस रास्ते पर ध्यान देना होता है। सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपका जो भी कूड़ा है, आपका जो भी वेस्ट है, आपको उन्हें प्रॉपर डस्टबिन में डालना है। वेट वेस्ट को आपको ग्रीन डस्टबिन में डालना है और ड्राई वेस्ट को आपको ब्लू वाले डस्टबिन में डालना है। इससे क्या होता है कि जो इस कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने में आसानी होती है और इस इलाके को साफ़ सुथरा रखने में आसानी होती है, क्योंकि ये इलाका पवित्र है, पावन है, और इस पावन इलाके को पावन रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपकी ज़िम्मेदारी इस वजह से भी है क्योंकि आगे जो आने वाले मेहमान हैं वो आपकी सफाई देखकर खुश होंगे, और हो सकता है कि उनमें भी इस तरह का उनके दिमाग में भी इस तरह का क्या विचार उठें कि जी सफाई से जो है हमें ये पूरा इलाका साफ़ रखना है, सफाई से ही इस पवित्र सफ़र की एक सफाई से ही इसकी एक पहचान है। हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, हम आगे और भी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और ये भक्ति संगीत एन्जॉय करते रहिए।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस

मार की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहाँ का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 1446 पे कॉल करें।

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम

ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

जी श्रोता, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण हमारी FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन EIR की आराधना चैनल DTH तथा OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। अगर आप भी इस प्रसारण का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी कोई बात, अपनी कोई शिकायत, अपना कोई सुझाव हम तक या प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे दो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर है 1800 180 7199, जी हाँ 1800 180 7199। इसी प्रकार से जम्मू क्षेत्र के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 7198, 1800 180 7198। इसी तरह से आप विभिन्न ईमेल्स का उपयोग करके भी अपनी कोई बात हम तक पहुंचा सकते हैं। akashwanibaltal@gmail.com हमारा स्टूडियोज़ का जो ईमेल आईडी है, हमारे स्टूडियोज़ का हेल्पलाइन नंबर है 9596990954, जी हाँ 9596990954। कृपया करके इस टेलीफोन नंबर पर कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप या SMS के ज़रिए अपनी बात हम तक पहुंचाएं। अगर बात करें अभी तक के दर्शन रिपोर्ट की, तो आज दिन के 11:30 तक कुल मिलाकर 5032 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हुए थे, जिनमें 3246 पुरुष, 1567 महिलाएं, 33 बच्चे, 26 साधु, 1 ट्रांसजेंडर और 159 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। और ये आंकड़ा जैसे ही बढ़ता है, जैसे हमारे पास ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आता है, हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मौसम के हवाले से हमारे पास यही जानकारी है कि मौसम फिलहाल खुशगवार बना हुआ है। बारिशों का सिलसिला जो है श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में थम चुका है, और हम यही उम्मीद रखेंगे कि मौसम के मिजाज में जल्दी से तब्दीली आए। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही, वाहनों का आना जाना फिर से बहाल हो जाए, ताकि यात्री आएं, श्रद्धालु आएं, पवित्र गुफा जाएं, बाबा बर्फानी के दर्शन करें और हमें अपनी सेवा का एक मौका प्रदान करें। फिलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए और सुनते रहिए भक्ति संगीत।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। और इस प्रसारण में हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद यही होता है कि आप तक ताज़ा तरीन जानकारी पहुंचाएं। और हमारे पास जो ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक 5032 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें से 3246 पुरुष, 1567 महिलाएं, 33 बच्चे, 26 साधु, 1 ट्रांसजेंडर और 159 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह बालतल के बेस कैंप से पवित्र गुफा की जानब 8371 यात्रियों को रवाना किया गया ताकि वो पवित्र गुफा में जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करें। और इनमें से 5032 यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। और बाकी जो यात्री हैं वो भी दर्शन का सिलसिला अभी जारी है, वो भी जा रहे हैं। और वापसी के रास्ते पर जो भी यात्री हैं उनसे हमारा यही निवेदन है कि आप अपना ख्याल रखें जाते हुए भी और आते हुए भी। और अगर आपको किसी किस्म की कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो, तो आप नज़दीकी किसी केंद्र पर जाकर वहाँ से सहायता हासिल कर सकते हैं। और इसी बीच हमारे जो बानिहाल के संवाददाता हैं मोहम्मद तस्कीन, उन्होंने हम तक एक रिपोर्ट पहुंचाई है जिसके मुताबिक शाहरा बदस्तूर बंद है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। दरमांदा मुसाफिरों के लिए आज श्रीनगर कटरा खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। शदीद बारिश, मिट्टी के तूदे गिरने और पत्थरों के खिसकने के बायस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा हफ्ते को भी हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद रही, जबकि बहाली का काम जारी है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक उधमपुर के देवल पुल समरोली के करीब बहाली का काम जारी है, जबकि रामबन और बानिहाल सेक्टरों में मुसलसल बारिश के बायस मुतअद्दिद मुकामात पर पस्तियां और पत्थर गिराने के वाकयात पेश आ रहे हैं। NHAI और ट्रैफिक पुलिस की टीमें शाहरा की बहाली में मसरूफ हैं और आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी जा रही है। उधर शाहरा की बंदिश के बायस दरमंदा मुसाफिरों की सहूलियत के लिए शुमाली रेलवे आज श्रीनगर और कटरा के दरमियान खसूसी ट्रेन चलाएगी, जो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि जो दरमंदा चाहे मुसाफिर हों या यात्री हों उन्हें किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ट्रेन दोपहर 1:15 पर श्रीनगर से रवाना होकर 2:15 पर बानिहाल पहुंचेगी, जबकि वापसी में शाम 5:05 पर कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन दोनों समतों में बानिहाल और संगलदान स्टेशनों पर भी रुकेगी। जी हां, उन सभी दरमंदा मुसाफिरों के लिए ये ज़रूरी इतला है कि आपके लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, खसूसी ट्रेन जो दोपहर 1:15 पर श्रीनगर से रवाना होकर 2:15 पर बानिहाल पहुंचेगी, जबकि वापसी पर आप शाम के 5:05 से कटरा में इसमें सवार हो सकते हैं और श्रीनगर के लिए इसको रवाना किया जाएगा। ये ट्रेन दोनों सिमतों में बानिहाल और संगलदान स्टेशनों पर भी रुकेगी। फिलहाल ये था हमारे पास आपके लिए एक ताज़ा रिपोर्ट, और दर्शन रिपोर्ट भी हमने आपको सुना दिया। और

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

ये कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी के विशेष प्रसारण में। और आपको बता दें कि आप ये प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा भी सुन रहे हैं।

बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। हमारे संग और श्रोताओं आपको बता दें कि आज हमें मिली जानकारी के अनुसार आज 12 बजे तक कुल मिलाकर 6,330 बाबा के भक्तों ने जो है बाबा भोलेनाथ के द्वार पर हाजिरी दी है और दर्शन किए हैं। और हम ये कहेंगे कि दर्शन का सौभाग्य पाया है। इनमें पुरुषों की संख्या जो है वो है 4,114, महिलाएं 1,992, बालक 33, साधु 28, ट्रांसजेंडर 2 और सुरक्षाकर्मी 161। और यूँ कुल मिलाकर आज सुबह से 12 बजे तक कुल मिलाकर 6,330 भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के द्वार पर जो है दर्शन

पाने का सौभाग्य पाया है। श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दर्शन सतह समंदर से 15,000 से ज्यादा फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में हाजिरी दी जाती है और बाबा भोले के दर्शन इन्होंने किए हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र गुफा में हाजिरी देकर इस पवित्रता के बाद, हम ये कहेंगे कि इस पवित्र यात्रा के बाद पवित्रता हासिल करने में सक्षम रहे हों, और वही जो यात्री, जो श्रद्धालु अभी दर्शन करने वाले हैं, उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहे, सुरक्षित रहे, आरामदायक रहे और सफलतापूर्वक रहे।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में हमारे संग, और अब से बस कुछ ही क्षणों में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। समाचार के लिए बस जरा सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है, एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था एयरपोर्ट का निर्माण और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा भीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितम्बर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण, और इसमें एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। और आपको बता दें, ये विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं FM बालताल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, TTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप एवं प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा भी हम आपसे जुड़े हुए हैं। और इस प्रसारण की जो है ये जो है एक ख़ास बात है कि हम जो है पल पल की क्षण क्षण की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और अभी की जानकारी ये है कि कुल मिलाकर 6909 बाबा के भक्तों ने आज 1 बजे तक दर्शन किए हैं। दर्शन पाने का सौभाग्य उनको मिला है, जिनमें पुरुषों की संख्या 4494, महिलाएं 2182, बालक 33, साधु 30, साध्वी 7, ट्रांसजेंडर 2 और सुरक्षाकर्मी 161। और जो कुल मिलाकर ये संख्या हमारी, ये आंकड़ा जो है बन जाता है 6909।

श्रोताओ बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और जो यात्री अभी प्रतीक्षा में है उनके लिए आज विशेष रेलगाड़ी जो है चलाई जाएगी, कटरा स्पेशल। आपको बता दें कि भारी वर्षा और भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण से आज जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। हालांकि इसे ठीक करने का काम भी जो है जारी है, रखरखाव का सारा काम जारी है। ट्रैफिक अधिकारियों के मुताबिक देवल ब्रिज यानी उधमपुर और समरोली के पास जी आपको बता दें कि देवल ब्रिज यानी उधमपुर और समरोली के पास हाईवे को ठीक करने का काम चल रहा है, जबकि लगातार वर्षा की वजह से रामबन और बानिहाल क्षेत्रों में कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं भी हुई हैं। और NHAI और ट्रैफिक पुलिस की टीमें राष्ट्रीय राजमार्ग को ठीक करने में जुटी हुई हैं। वहां पर रखरखाव का काम जो है जारी है और सबको सलाह दी गई है कि वे बिना आवश्यकता की यात्रा ना करें। और साथ ही आपको बता दें कि इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने की वजह से फंसे यात्रियों की सुविधा के लिए नॉर्थर्न रेलवे आज श्रीनगर और कटरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। आपको बता दें ये ट्रेन दोपहर 1:15 श्रीनगर से रवाना होगी और दोपहर 2:15 पर बानिहाल पहुंचेगी, जबकि वापसी की सर्विस शाम 5:05 पर कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना होगी। और दोनों तरफ की यात्रा

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। समझ न पाया अजब है तेरी माया। श्रोताओं आपको बता दें कि ट्रांजिट कैंप्स को यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है और इनको रखा गया है। आपको बता दें कि प्रशासन पूरी तरह से इसी प्रयास में है कि किसी भी तरह की असुविधा यात्रा को लेकर या यात्रियों को ना हो। यात्रा की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए जगह जगह सुरक्षा कर्मचारियों को रखा गया है, जो बहुत ही अच्छी तरह से अपना कर्तव्य जो है अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और विशेष रूप से नगर पालिका कर्मचारी, सफाई कर्मचारी उनकी बात करें तो जीरो वेस्ट का प्रबंध भी किया गया है, सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखा गया है और पवित्र गुफा के आसपास और यात्रा ट्रैक पर, यात्रा मार्ग पर स्वच्छता का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। हर छोटी बड़ी बात जो भी यात्रा से जुड़ी है उसको ध्यान में रखा गया है। और तभी जो है हम ये कहेंगे कि ये यात्रा जो है इसके व्यवस्थाएं की गई हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए, मौसम को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये कहेंगे कि इसी कारण के ये यात्रा जो है बहुत ही सुखद और सुरक्षित रूप से किसी भी बाधा के बगैर चलती रहे। मौसमी बदलाव तो होता रहता है और हम ये कहेंगे कि जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं यात्रा को लेकर या ये यात्री जो है इस सब बहुत इन व्यवस्थाओं से, इस प्रबंध से बहुत ही प्रसन्न देखे जा रहे हैं। यहाँ पर ये भी विशेष रूप से आप से कहना चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी जो है विशेष रूप से यात्रा की व्यवस्थाओं पर दृष्टि जो है बनाए रखे हुए हैं और मार्गदर्शन भी इसका कर रहे हैं। और आप सभी से

यही निवेदन कि आप भी अपनी पूरी यात्रा में प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा सुखद तरीके से चलती रहे और किसी भी बाधा का सामना ना हो, कोई भी असुविधा ना हो। और साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि सीमा सड़क संगठन, हमारे सभी योद्धा नायक जो भी इस यात्रा के कार्य से जुड़े हैं, जिला प्रशासन अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हमारे संवाददाता विशेष रूप से, और हर वो व्यक्ति जो समर्पित, हम ये कहेंगे कि वो सब समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, और बाज़ार एसोसिएशन की बात करें, ये सभी विशेष रूप से इस यात्रा के लिए जुटे हुए हैं ताकि, और हमारे ये कहेंगे कि जुटे तो हैं और हम ये कहेंगे कि ये हमारे विशेष अभिनंदन के पात्र भी हैं और इसी प्रयास में जुटे हैं कि ये यात्रा किसी भी बाधा के बगैर चलती रहे।

अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आपका और हमारा साथ बना हुआ है, और ये प्रसारण आप FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ बालताल के माध्यम से सुन रहे हैं, और पहलगाम के मार्ग पर आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी आप हमें सुन पा रहे हैं। और अब से श्रोताओं आपको बता देंगे, अब से बस कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से समाचार सुनेंगे। समाचार के लिए बस जरा सी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड एलूरी सीताराम राजू बैन अलावामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबों में 18,000 करोड़ रुपए की मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाला दूसरा मजदूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 200 रुपए की कमी कर दी है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड अलूरी सीताराम राजू बैन अक्वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। उन्होंने तकरीबन 18,000 करोड़ रुपये मालियत के अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया, इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए गए हैं जिनमें सड़कें और तवानाई की यकीनी फराहमी शामिल है। इससे आंध्र प्रदेश की तेज तरक्की में तरक्की होगी।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: नए हवाई अड्डे की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये फख्र की बात है कि यह हवाई अड्डा अलूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है और इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह ऐसी सरजमीन पर किया गया है जहां मुजाहिद आजादी ने कबायली तबकात के हकूक के लिए लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश, खसूसन शिमाली आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए मददगार साबित होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पार्लियामेंट में जुमेरात को मंजूरी दी गई थी। इस कानून का मकसद सख्त सजाएं मुकर्रर करके और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करके गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। इस बिल में इम्तिहान के निजाम में एक कानूनी फ्रेमवर्क के जरिए शफाफ और सही तौर तरीकों और दयानतदारी की बात कही गई है ताकि बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज किया जा सके। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के केलम इलाके में कल शाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान जो दूसरा मजदूर जख्मी हुआ था वो भी आज सुबह जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। इस तरह मरने वालों की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। पुलिस के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि जख्मी मजदूर श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों मजदूरों पर कल शाम नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी जो ईंटों के एक भट्टे पर काम कर रहे थे। इस वाकये के फौरन बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई और दहशतगर्दों को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हलाकत की सख्त मजम्मत की है और मारे गए मजदूरों के कुम्मों के तई ताजियत का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी है कि वो इस हमले में मुलविस दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए इलाके में अपनी कार्रवाई और तेज करें। जनाब अब्दुल्ला ने मरने वाले मजदूरों के कुम्मों के लिए वजीर आला के राहती फंड से 10-10 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा कुलगाम जिला इंतजामिया की तरफ से फौरी तौर पर 6 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 200 रुपए की कमी कर दी। कीमत में कमी के बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 2,738 रुपए होगी। इसी तरह कोलकाता में 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए होगी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की नई कीमत का इतलाक आज से हो गया है। इस फैसले से ढाबों, होटलों और खुराक मशरूबात के कारोबार से वाबस्ता अफराद को काफी राहत मिलेगी। साजो सामान और खिदमात टैक्स जीएसटी की वसूलियाबी पिछले महीने 2,11,205 करोड़ रुपए रही जो जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए थी। इस तरह इसमें साल ब साल 15.4% का इजाफा दर्ज किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी आरजी आदाद शुमार के मुताबिक मजमुई घरेलू जीएसटी रेवेन्यू 1,44,695 करोड़ रुपए रहा जो पिछले साल के मुकाबले 10.1% ज्यादा है। चुनाव कमीशन ने तेलंगाना में वोटर फेरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी के लिए अपने प्रोग्राम में फिर तब्दीली कर दी है। कमीशन ने कहा कि इंतखाबी फेरिस्तों पर नजरसानी का प्रोग्राम तेलंगाना के आला इंतखाबी अफसर की दरखास्त के बाद अंजाम दिया गया है। नजरसानी प्रोग्राम के मुताबिक बूथ सतह के अफसरान इस माह की 10

0: तारीख तक तस्दीक के लिए घर घर जाएंगे और उसी तारीख तक पोलिंग स्टेशनों को माकूल बनाने और उनके दोबारा इंतजाम का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। चुनाव कमीशन ने कहा कि अब इंतखाबी फेहरिस्तों का मुसवदा 10 अगस्त को शाये किया जाएगा। भारत और चीन आज सिक्किम में नाथुला पास के जरिए सरहदी तजारत दोबारा शुरू करेंगे, जिससे दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक अहम तजारती रास्ते की बहाली होगी। तजारत की बहाली से 6 साल तातुल खत्म हो जाएगा, जो 2020 से कोरोना वायरस वबा की वजह से पैदा हुआ था। तवक्को है कि तजारत की बहाली से सरहद पार तजारत को फरोग मिलेगा, जिससे रजिस्टर्ड ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और मुतालिका कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। नाथुला के जरिए तजारत 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मुअत्तर रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुई थी। ओडिशा में महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, जिससे दरिया से मुत्तसिल नशेबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने मौजूदा सूरत हाल और इमदादी कार्रवाईयों का जायजा लेने के लिए आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई सर्वे किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत में मजीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके बाद इंतजामिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महानदी दरिया में मुसलसल पानी बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोरधा जिलों के नशेबी इलाकों में दोबारा सैलाब आने का खदशा बढ़ गया है। वजीर आला ने भद्रक, बालासोर, जाजपुर और क्यूंझर के सैलाब से मुतासरा जिलों का भी फजाई सर्वे किया, ताकि मौजूदा सूरत हाल और इमदादी कार्रवाईयों का जायजा लिया जा सके। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के दूसरे निसफ हिस्से के दौरान मुल्क में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कहा है कि इम्कान है कि इस माह बारिश तवील मुद्दती औसत का 94% से भी कम होगी। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि मशरकी जजीरा नुमा भारत, शिमाल मगरब के कुछ इलाकों, वस्ती भारत और मशरक और शिमाल मशरकी इलाकों में इस तरह के हालात रहने का इम्कान नहीं है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर नीरज चोपड़ा और कांसे का तमगा हासिल करने पर यशवीर सिंह को मुबारकबाद दी है। ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा आज सेमीफाइनल में शानदार जीत हासिल करने के बाद खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई। 17 साल तन्वी ने चीनी ताइपी के खिलाड़ी को सीधे सेटों में 21-17, 21-11 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड अलूरी सीताराम राजू बैन अल्कवामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबों में 18,000 करोड़ रुपए की मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाला दूसरा मजदूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 200 रुपए की कमी कर दी है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akash Mani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Odisha, with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said,

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह

0: प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 ईयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रूपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।

0: आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में

0: पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमरीका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पर व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
3: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
3: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ
4: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। ये विशेष प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग, और आपकी सुखद सफल यात्रा की कामना करते हुए क्षण क्षण की छोटी बड़ी सूचना आपको देने के लिए हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं और आप तक हर संभव सूचना या जानकारी पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। इसी संबंध में हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। जी तस्कीन साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारी वर्षा

0: भूस्खलन के कारण जो है आज जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को सभी वाहनों के लिए बंद रखा गया था। हालांकि इसे ठीक करने का काम भी जो है जारी है, लेकिन क्या कुछ ताज़ा जानकारी है आपके पास इससे जुड़ी?
1: जैसा कि सबको मालूम है कि कल सुबह से हाईवे को बंद कर दिया गया था NH-44 को। इस पर जम्मू और श्रीनगर से किसी भी किस्म के ट्रैफिक को कल से चलने की इजाजत नहीं, कल सुबह
0: जी
1: से।
0: जी
1: और इस दौरान जो कल की यात्रा थी, अमरनाथ यात्रा जो जम्मू से पहल बालतल जाने वाली थी, उसको भी निकाला गया था।
0: जी
1: लेकिन आज सुबह जो इस वक्त एक्सपेक्ट था कि आज सुबह ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा, लेकिन जो रात में बारिशें हुई, खासकर उपोर स्ट्रेच में जो बारिशें हुई, उसकी वजह से जो वहां पर देवल के मुकाम पर एक बहुत बड़ा लैंड स्लाइड चल रहा है, उसने बड़ा परेशान कर रखा है एडमिनिस्ट्रेशन को पिछले 8-10-12 दिन से।
0: जी
1: सॉरी, तो उसको भी वहां पर भी काम था, कुशादगी का काम था, वाइडनिंग का काम था, ये मुख्तलिफ मुकाम पर खासकर उधमपुर के स्ट्रेच में, और
0: जी जी
1: ये चलता रहा। और आज इसीलिए ट्रैफिक, क्योंकि बारिशें हुई और स्लाइडिंग हुआ था, तो इसलिए आज जो यात्रा ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आज किसी भी किस्म की यात्रा को जम्मू या श्रीनगर से चलने की इजाजत नहीं
0: नहीं
1: थी। तो इस दौरान जो हाईवे पर रेस्टोरेशन का काम था वो जारी रहा, और इस दौरान दोपहर के बाद मौसम में भी थोड़ी बेहतरी आई। अगर इस वक्त रामन वन हल्दे गए तो धूप भी निकल आई है, तेज धूप आई निकल आई है। बारिशें हालांकि अब तक ठीक 2-2.5 घंटे पहले से थम गई है, तो अभी बहुत तेज धूप है और बादल भी साथ साथ है। और इस तरह जो एक्सपेक्ट है, जो दहशत गोई है, उसके मुताबिक मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया, हल्की फुल्की बारिशों का फिर इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान जो हाईवे है, इस पर जो काम किया गया, इसको अब अभी काबिले आमतौर बनाया गया। अब से करीबन 20 मिनट पहले 2:30 बजे से ट्रैफिक को वहां पर उधमपुर के पास जो सिंगल कैरिज वे के लिए वन वे ट्रैफिक को वहां पर बहाल किया गया है। और अभी कुछ वक्त पहले काजीगुंड और उधमपुर से जो LMV से लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनको छोड़ दिया गया है। और इससे पहले जो वहां जो पक्षियां थी उनके आर पार जो ट्रैफिक रुका हुआ था, कल से ट्रैफिक रुका हुआ था, तो उसको भी चलने की इजाजत दी गई है। और अभी जो है हाईवे पर ट्रैफिक की जो सरगर्मी है दोबारा बहाल हो गई। ट्रैफिक की रौनक जो है, जो एवर बिजी हमारा हाईवे रहता है, जब ट्रैफिक नहीं पड़ता तो एकदम सुनसान जैसा दिखता है, और ट्रैफिक से ही इसकी जो शोभा वो बढ़ जाती है। तो अभी ट्रैफिक चलना शुरू हो गया और हाईवे पर फिर वो रौनक लौट आई है जो पिछले 2 दिन से हम वो देख रहे थे, मांद पड़ी हुई थी।
0: जी जी
1: जी
0: जी और मौसम भी, आप कह रहे हैं कि मौसम भी और बेहतर हो गया है?
1: बेहतर हो गया, अब दोपहर 12-1 बजे के बाद बेहतर हो गया, और धूप और छाऊ साथ साथ है, लेकिन धूप जो है उसमें बहुत मतलब तेजी है, धूप में बहुत हॉट है, इस वक्त गर्म है, बहुत बाहर गर्मी है। हालांकि हल्की हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन इसके बाद भी टेम्परेचर बहुत तेज है इस वक्त।
0: और जो वाहन रुके हुए थे, इंतजार में थे कि हमें आगे चलने की इजाजत मिले, उनको इजाजत मिल चुकी है?
1: बिल्कुल, जो एक तो हुआ वो जो कल सुबह से जो गाड़ियां जैसे उधमपुर
0: निलंबित, जी जी
1: जो स्लाइडिंग एरिया था उसके आर पार थी, बनाहाल में रोकी थी, काजीगुंड में रोकी थी, फिलहाल मतलब इसको कहेंगे अब टर्न बाय टर्न सब ट्रैफिक को छोड़ दिया गया है। खासकर LMVs को, जो मुसाफिर गाड़ियां हैं जो 2 दिन से अब खड़ी थी, इसमें टूरिस्ट भी है, इनमें अनरजिस्टर्ड यात्री भी है,
0: जी,
1: मुसाफिर भी है, सब भी फंसे हुए थे, तो इनको अब अलाउ किया गया। तो अब उनके लिए ये एक खुशी की खबर है कि वो जो कल 2 दिन से बंद थे, फिलहाल हाईवे को रेस्टोर किया गया और ट्रैफिक अभी चल रहा है, पूरा मतलब रामबन बनहाल सेक्टर से गुजर रहे अपने अपनी मंजिलों की तरफ।
0: तो चलिए, ये तो प्रसन्नता की बात है कि ये जो वातावरण है फिर से वापस नॉर्मल हो रहा है।
1: हम बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि अब देखेंगे, अगर पिछले 7-8 रोज से हल्की हल्की बारिशें हो रही है और 5-6 दिन हमारा यात्रा भी बंद रहा, 3 दिन ट्रैफिक भी बंद रहा, नेशनल हाईवे भी बंद रहा,
0: जी।
1: और सब जो था वो मौसम की वजह से ही था, मौसम की खराबी की वजह से था। तो हाईवे को जब बारिशें होती है तो इसको मेंटेन रखना बड़ा दुश्वार हो जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रैफिक पुलिस के लिए। तो इस दफा जो अगर कहेंगे तो रामबन स्ट्रेच में थोड़ा ठीक ही रहा, ज्यादा इधर नहीं हुआ, लैंड स्लाइडिंग हुई लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो, लेकिन उधमपुर के सेक्टर में खासकर देवल की जो स्लाइड है, यहाँ समरूली के इलाके में, तो वो तो एक बिल्कुल मुसीबत बनी हुई है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने के लिए। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मशीन है, कल भी वहां पर कुहाड़ी पूरी खिसक रही थी, उस वजह से कल दो तीन बार काम को रोकना पड़ा, बारिशें हुई उससे भी काम को रोकना पड़ा। तो अल्टीमेटली फाइनली उन्होंने आज जो

0: दो चार मशीनें वहां पर लगी थी, बड़ी भारी भरकम मशीनरी जो लगाई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उसे फिलहाल उसको इस काबिल बनाया है। अलबत्ता वहां पर गाड़ियां अभी भी फंस रही हैं, अगर बड़ी गाड़ी कोई आ जाती है तो उसके टायर जो है, पहिए जो है, वो बिल्कुल वहां पर जो गारा और मिट्टी बिल्कुल बनी हुई है, नीचे कीचड़ बने हुए तो उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से उनको निकालना भी अभी एक मतलब अपहिल टास्क है ट्रैफिक पुलिस के लिए, खासकर और हाईवे अथॉरिटी के लिए। इसके अलावा वहां पर अभी बाजरी और पत्थर वगैरह भी गाड़ियों में ला कर डाले गए हैं उस एरिया में, खासकर देवल के इलाके में जहां पर गाड़ियां फंस रही है कीचड़ की वजह से, दलदली वो जो जमीन वहां पर बनी हुई है उसकी वजह से, तो वहां पर उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज किया गया, उसके जो सरफेस है नीचे रोड का तो उस पर अभी फिलहाल निकाला जा रहा है ट्रैफिक को। तो उम्मीद है कि ये जो कल से जो ट्रैफिक फंसा है, उम्मीद है कि इस सबको शाम देर तक या आधी रात तक निकालने की कोशिश की जाएगी और कामयाबी मिलेगी ट्रैफिक पुलिस।
1: बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल तो इस जो ये हमारा ये ट्रैफिक जो है इसको अगर इन्होंने कर दिया है, इनको ओके कर दिया है, इनको छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब एक उम्मीद की किरण हमको मिल गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ना ट्रैफिक छोड़ दिया है, फिलहाल चल रहा है, मगर वहाँ पर जो प्रॉब्लम अभी भी है, मतलब ट्रैफिक एसएसपी साहब का कहना है कि गाड़ियों का निकालना बड़ा दुश्वार और उसको धक्के मारने पड़ रही हैं, और जब कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है उसके उसके टायर जो ज्यादा दब जाते हैं, उसकी वजह से जो छोटी गाड़ियां फिर आती है उनको निकालना
1: फंस जाती है, जी जी
0: मुश्किल हो जाता है, वो फंस जाती है। तो अभी उसका यही इलाज हमने किया, वहाँ पत्थर वत्थर डाल दिए, ये जो बजरी वगैरह जो डाल दिया उसमें, तो उस वजह से अब थोड़ा सा ट्रैफिक वहां पर गुजरना शुरू हो गया है।
1: जी तस्कीन साहब, इस विस्तृत विवरण के लिए, इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत शुक्रिया।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद तस्कीन बानिहाल से राष्ट्रीय राजमार्ग का हालचाल बता रहे थे। तो एक उम्मीद की किरण जो है मिल चुकी है कि पूरे हम ये कहेंगे कि ट्रैफिक को अलाउ किया गया है, उनको आगे जाने की इजाज़त जो है मिल चुकी है, और जो तीर्थ यात्री जो है, जो प्राइवेट गाड़ी प्राइवेटली भी आते हैं, तो उनको भी जो है आगे जाने की इजाज़त मिल चुकी है। बने रहिए क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हमारे साथ।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और आपको बता दें कि 2 बजे तक कुल मिलाकर 7,475 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन पाने का सौभाग्य जो है उन्हें मिला है, जिनमें पुरुषों की संख्या 4,901, महिलाएं 2,306, बालक 38, साधु 33, साध्वी 16, ट्रांसजेंडर 4 और सुरक्षा कर्मचारी 177 इसमें शामिल है, जो ये कुल आंकड़ा जो है बन जाता है 7,475 आज 2 बजे तक जिन्होंने बाबा भोले के दर्शन जो है किए हैं। और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि एलएमवीज को जो है नगरोटा और काजीगुंड दोनों तरफ से हम ये कहेंगे कि हल्की गाड़ियों को रवाना जो है कर दिया गया है। सिंगल कवरेज पर फंसी गाड़ियों की आवाजाही जो है उसको भी बहाल कर दिया गया है, जबकि बीच बीच में मरम्मत और रखरखाव का काम भी सड़क पर जारी है और सड़क की नरम सतह को मजबूत करने का काम भी जारी है। लेकिन वाहनों को, छोटे वाहनों को भी जो है इजाज़त मिल चुकी है, उन्हें हम ये कहेंगे कि जो छोटे वाहन हैं उनको आगे चलने की इजाज़त मिल चुकी है।

0: जी श्रोताओ, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप तक क्षण क्षण की जानकारी पहुंचाने के लिए हम हमारे संवाददाताओं से जोड़ते हैं, ताकि आपकी यात्रा जो है सुखद रहे और ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और इस वक्त फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आधार शिवर पहलगाम से हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस तारीख। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या ताज़ा जानकारी है इनके पास यात्रा को लेकर। जी तारिक साहब।
1: हाँ, बहुत शुक्रिया सायका जी। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज 29 दिन पूरे हो गए हैं। तो श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा और ऊंचे वाले क्षेत्र में आज मौसम आमतौर पर अब आलूद रहने के साथ कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज वर्षा हुई है। पहलगाम से पवित्र गुफा यात्रा मार्ग पर इस समय कहीं कहीं मध्यम वर्षा हो रही है, जबकि जिला के अधिक स्थानों पर भी सुबह से बारिशें हो रही है। आज वातावरण में दर्ज हरारत कम, जो अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि हवा में नमी मात्र लगभग 99% थी। इधर शिशनाग, महागुणस्ता, पंचतरणी और श्री अमरनाथ जी यात्रा की पवित्र गुफा समेत सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नमी से भरपूर और दुर्गम मौसमी स्थितियों बनी हुई है। घनी धुंध के कारण इन स्थानों पर बारिश में भी कमी आ सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के समय गरज चमक के साथ वर्षा और बूंदाबांदी की जो पहली संभावना की पेशगोई की गई थी, वक्ते वक्ते से हो रही बारिश के कारण पहलगाम यात्रा मार्ग फिसलन भरा हो रहा है। इसलिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। तो खराब मौसम के परिस्थितियों पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग और रामबन में रोड रिपेयरिंग के कारण और गुज़श्ता रात की भारी वर्षा और तेज ट्रैक पर जारी मरम्मत के कार्य के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी यात्रा को फिलहाल आज के दिन में रिवायती मार्ग पहलगाम और बालका दोनों मार्गों पर आर्जी रूप से निलंबित रखा गया है। आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी यात्री के जत्थे को घाटी आने की अनुमति नहीं दी गई है। अलबत्त बालका बाजार शेवर से 8,000 से जाहिर श्रद्धालु आज सुबह बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के ओर रवाना हो गए थे और तकरीबन इतनी ही संख्या में दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार आने और यात्रा मार्ग के पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी।

0: दिनों की यात्रा के आरंभ से अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या लगभग 4.5 लाख को पार कर गई है। इधर पहलगाम के नुनोनादर शिवर, शिशनाग और अजतरनी शहरों में इस समय कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं है। राम यात्रा मार्ग और सभी आधार शिविरों पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और आवश्यक सहूलत के फराहमी के लिए पूरी निष्ठा के साथ तैनात है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर पवित्र गुफा तक 3 सतर या सुरक्षा घेरे कायम किए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी सेवा अंजाम दे रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सफल बने रहे। जी
1: जी, श्रावण का महीना है तो वर्षा का होना तो हम कहेंगे कि अनिवार्य है, तो लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आपने भी कहा कि वहां पे इस वक्त जो है वर्षा हो रही है, तो क्या बाकी व्यवस्थाएं जो है वो रखी गई है यात्रियों के लिए?
0: बिल्कुल, अभी अगर हम आज रात की बात करें तो आज मिड नाइट को वर्षा हुई है पहलगाम के एरिया में, जहाँ खासकर जो पहाड़ी ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके हैं ज्यादा बारिश हुई थी। लेकिन उसके बाद अगर दोपहर की बात करें, क्योंकि आज एक प्रेडिक्शन भी थी दोपहर को भी वर्षा होगी, लेकिन इस वक्त जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है पहलगाम के इन बालाई इलाकों में कहीं कहीं पे मध्यम बारिशें हो रही, लेकिन पहलगाम के बीच में बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही। लेकिन रही बात इंतजाम के लिए, पहले ही ये सारा ब्लू प्रिंट बनाया गया है, सारी चीजें मुहैया रखी गई है, हर जगह जो है जो टेंट है विंड प्रूफ वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए हैं, मौजूद है। और खासकर जो यात्रा ट्रैक में, पहले ही मैं अर्ज कर चुका हूँ कि यात्रा ट्रैक में जगह जगह पे शेल्टर बनाए गए हैं, बिल्कुल 1 किलोमीटर के फासले पर है। अगर कहीं दौरान सफर या पद यात्रा में अगर कहीं पे भी वर्षा होती है तो उन यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए वहां उनको रखा जाता है जहां अच्छी खासी जगह बनी हुई है। और साथ ही जो जितने भी विभाग है इनके, खासकर मौसमी विभाग हो या बीआरओ हो या उसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, ये सब के सब बिल्कुल उनकी हिफाजत के लिए वहां खड़े हैं और उन्हें गाइडलाइन देते हैं। लेकिन कुछ आदेश भी मिलते हैं उनको, उस वक्त आपको कौन से तरीके इख्तियार करने होंगे तो वो हिदायत पे भी अमल करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारा सफर जो है इसमें ये चीजें पहले ही तय हुई है, उनको हाई रिस्क की तरफ देखा जा रहा है पहले ही कि वर्षा होगी या नहीं होगी, लेकिन बारिशों की हिफाजत के लिए वहाँ इंतजाम पहले ही है। अगर ज्यादा लोग आते हैं फिर कम भी आए, लेकिन ज्यादा लोगों के लिए इंतजाम है। इस तरीके से जो नुनोन बेस कैंप में अगर हम देखें तो वहाँ 10,000 लोगों के लिए जगह है, जबकि 8,000 से बिलो ही अभी तक यात्रा वहाँ आई है, लेकिन वो हमेशा उसको एक्स्ट्रा करके ही पेश करते हैं।
1: जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विस्तृत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता पहलगाम से एस तारिक, जिन्होंने ये ताज़ा जानकारी हमें दी और बताया कि इस वक्त रुक रुक के वर्षा हो रही है, पहलगाम के क्षेत्र में अभी रुकी है लेकिन किसी किसी क्षेत्र में वहाँ से जो है वर्षा हो रही है। हम कहेंगे कि वर्षा तो ये मौसम ही है, श्रावण का महीना ऐसा है कि जिसमें वर्षा कभी भी हो सकती है, लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रख ते हुए ही व्यवस्थाएं जो है प्रशासन ने की हुई हैं और हर एक बात का ध्यान जो है रखा गया है ताकि हमारी ये यात्रा जो है सुखद तरह से चलती रहे बिना किसी बाधा के।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं। हमेशा

0: आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ यात्रा हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही प्रसन्नता और उत्सव का समय होता है। तीर्थयात्री आशा और नवीनकरण की भावना के साथ स्वामी श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में हाजिर होते हैं और वो शांति और संतुष्टि की भावना के साथ प्रसन्न होकर फिर बाबा के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु जो है अपने अपने घरों की और अपने क्षेत्रों की ओर लौटते हैं। श्रोताओं, ये एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक रूप और आध्यात्मिक रूप से कठिन अवश्य है, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा भी है जो अर्थ और महत्व से भरी है। बाबा के भक्तों को अक्सर कठिन परिस्थितियों से गुजरकर पहाड़ों के माध्यम से पद यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि यात्रा आध्यात्मिक निरीक्षण और आत्मनिरीक्षण और चिंतन का एक अवसर भी है। यात्री पवित्र गुफा में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने के साथ साथ वो हिमालय की सुंदरता और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव भी करते हैं और भाग्यशाली होते हैं वो भक्त जो बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त करने के साथ साथ पवित्रता हासिल करने में भी सफल होते हैं। और हमारी प्रार्थनाएं यही है, मनोकामनाएं

यही है कि आप जिन्होंने भी बाबा भोले के द्वार पर हाजिरी दी है, दर्शन किए हैं, कि आप पवित्र गुफा में हाजिरी देकर उस पवित्र यात्रा के बाद पवित्रता हासिल करने में सक्षम हुए हों।

श्रोताओं, मौसम कोई भी करवट ले, श्री अमरनाथ यात्रा में यात्री प्राकृतिक की सुंदरता का आनंद लेते हुए जो है आगे बढ़ते हैं और दूसरे भक्तों की भीड़ के साथ चलते चलते मन मगन हो जाता है, है ना। और प्रसन्न होते हुए वो इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि उनको नई नई ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती है और सकारात्मकता आती है। और फिलहाल जो है आपको बता दें कि किसी भी असुविधा का कोई जो प्रतिवेदन है नहीं मिला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज 3 बजे तक कुल मिलाकर 7,980 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 5,286, महिलाएं 2,396, बालक 40, साधु 36, साध्वी 23, ट्रांसजेंडर 5 और सुरक्षा कर्मी 194 इस आंकड़े में शामिल है, जो कुल मिलाकर बन जाता है 7,980, जिन्होंने आज 3 बजे तक बाबा भोले के द्वार पर अपना माथा टेका है और दर्शन का सौभाग्य जो है पाया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी पर ताजा खबर नैंसी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकॉर्ड
1: श्रोताओं बने हुए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में और हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है एफएम बालदाल से एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के द्वारा भी हम आप के साथ जो है जुड़े हुए हैं एवं वेव्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके साथ हम बने हुए हैं।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और इस प्रसारण की विशेषता ही यही है कि आप तक क्षण क्षण की सूचना जो है यात्रा को लेकर पहुंचाने के का हम पूरा पूरा प्रयास करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप पांथा चौक से हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान नायक को जुड़ चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ ताज़ा स्थिति है आज श्रीनगर में मौसम को लेकर, यात्रा को लेकर, यात्रा मार्ग को लेकर। जी इमरान साहब,
1: सबसे पहले आज यात्रा को लेके लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से आज एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली गई, और जिसमें अमरनाथ जी यात्रा के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक रिव्यू लिया, जायजा लिया। और इस सिलसिले में एलजी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स एसएसपीज को कहा कि वो एसओपीज को फॉलो करते हुए यात्रा में यात्रियों की जो देखभाल है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उसको एंश्योर करें, और साथ ही यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना। इसके अलावा आज श्रीनगर में सुबह, जैसे हमने अपडेट किया था कि पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से अमरनाथ जी यात्रियों का जो काफिला है, जो कॉन्वे है, वो अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए यहां से निकली थी, रवाना हुई थी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बीच में, वो भी वहां लगभग पहुंच चुकी है। और इसके अलावा मजीद यहाँ कई सारे यात्री हैं जिन्होंने अभी तक दर्शन नहीं किया है, और कल लगभग उन्हें अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। तो और हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जहां आज एलजी साहब की तरफ से हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली गई, यात्रियों की हिफाजत के लिए या ओवरऑल यात्रियों के लिए जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी सिक्योरिटी एजेंसीज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अधिकारी या आला जो हाई लेवल ऑफिशियल थे वो इस मीटिंग में मौजूद थे। और कुल मिला के जम्मू कश्मीर में ओवरऑल एक तो सिक्योरिटी का उन्होंने रिव्यू लिया, और खासकर यात्रा को लेके उन्होंने डायरेक्शंस पास किए हैं ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और मौसम भी आज श्रीनगर में बिल्कुल इस वक्त साजगार है, हालांकि सुबह जैसे हमने अपडेट किया था कि काफी तेज बारिश हो रही थी, 2-2.5 घंटे तक शहर में काफी तेज बारिश हुई, लेकिन जैसा कि पहले से ही मौसम विभाग या वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेडिक्शन थी कि ये बारिशें वक्फे से होंगी, यानी कि ये बारिशें जो है इस मौसम में इसी तरह से हमें उम्मीद देखने को मिलती है कि बीच में बारिश होंगी, वहीं धूप खिलेगी, वहीं आसमान पर बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं चलेंगी, कहीं ह्यूमिडिटी कम होगा, कहीं विजिबिलिटी लो होगी। तो यही सूरत हाल अभी शहर में देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि फिलहाल मौसम बिल्कुल
0: सुहाना बन गया है,
1: सुहाना है पूरे वैली में और स्पेशली श्रीनगर सिटी में। और यात्रियों को लेके भी जैसे मैंने कहा कि वहाँ अरेंजमेंट्स भी है और साथ ही सिक्योरिटी भी है और बाकी जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है वो पहले से ही इंश्योर है, और यात्रियों से हम बात कर रहे हैं और उनका फीडबैक भी हासिल कर रहे हैं। तो अब उम्मीद यही है कि एक तो मौसम बिल्कुल साजगार रहे ताकि जो यात्री आ रहे हैं, चूंकि जो छड़ी मुबारक भी इस वक्त कश्मीर में ही है, तो इसलिए एक तो उसका दर्शन भी मुकम्मल हो और साथ साथ मौसम साफ और साजगार होने से जो यात्री आ रहे हैं उनका दर्शन भी मुकम्मल हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या श्राइन बोर्ड की तरफ से या सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से यात्रियों की जो हिफाजत है, यात्रियों के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि कहीं भी कमी या कोताही नजर नहीं आ रही है, और बस मौसम साफ रहे।

0: उम्मीद है कि यात्रा इसी पीसफुल तरीके से जारी रहेगी।
1: जी इमरान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो व्यवस्थाएं जारी हैं, जो अभी भी चल रही हैं, तो इनको लेकर क्या हमारे यात्री संतुष्ट हैं?
0: देखिए, पहले दिन से फ्रॉम द डे फर्स्ट हम अमरनाथ जी यात्रियों से बात कर रहे हैं, और इसमें हमने पर्सनली इसको तीन कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया है। एक वो यात्री जो कई सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, दूसरे वो यात्री जो पहली मर्तबा यात्रा के लिए कश्मीर पहुंचे हैं, और तीसरा वो यात्री जो अभी यात्रा मुकम्मल नहीं किए हैं और अभी
1: इंतजार में है, प्रतीक्षा कर रहे हैं।
0: तो हम तीनों कैटेगरीज के यात्रियों से बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स को लेके यहाँ पहुंच के, या जो यात्रा कर चुके हैं इस साल आए तो उनका क्या एक्सपीरियंस, अब नया कुछ क्या उनको देखने को मिला। सो एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि अभी तक किसी यात्री की कोई एडमिनिस्ट्रेशन की जो उनके लिए सुविधाएं रखी गई है या जो अरेंजमेंट्स किए गए, जो इंतजाम रखे गए, उन पर कोई उनका अभी तक कोई नेगेटिव जो है रिस्पांस नहीं है, और ना ही कोई उनकी कोई ग्रीवियंस या शिकायत है। और इसलिए जितने भी यात्रियों से हम बात करें, इवन के आज सुबह भी दो चार यात्रियों से हमारी बात हुई थी, वो डल लेक की तरफ विजिट किए हुए थे, तो यहाँ की खूबसूरती का वो नजारा भी कर रहे थे और साथ ही यात्रा भी उन्होंने मुकम्मल किया, और शंकराचार्य का जो मंदिर है वहां पे भी उन्होंने दर्शन किया। तो उनका यही मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो अरेंजमेंट्स उनके लिए है वो बहुत अच्छी है, और उसमें कहीं भी उनको खामी या कमी नजर नहीं आई, और सिक्योरिटी खासकर इंडियन आर्मी पुलिस और जितने भी बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एंड ऑल दैट, ये सारे लोग जो है इनके साथ काफी अच्छी तरह से ताउन भी पेश करें, सर्विस प्रोवाइडर्स लोकल्स या फिर वॉलंटियर्स इस यात्रा में अपनी खिदमत या अपनी जो सर्विसेज जो है दे रहे हैं। तो सबका यही मानना है यात्रियों का कि हर एक का व्यवहार, हर एक का जो बिहेवियर है यात्रियों को लेके, वो काफी संतुष्ट है, वो काफी अच्छा है। लेकिन सिर्फ ये कि मौसम बेहतर रहे और जो यहाँ यात्री दूर दूर से देश के हिस्सों से आ रहे हैं वो यात्रा मुकम्मल कर सके, बस उसी का इंतजार है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मौसम बिल्कुल आज इस वक्त
1: बेहतर हो रहा है जी,
0: और यात्री जो है दर्शन के लिए जाए, और बहुत सारे यात्रियों ने इस वक्त जो, चूंकि हम बात करें तो इस दौरान भी कई सारे यात्रियों ने सुबह से आज दर्शन किया हुआ है, और शाम तक और भी इस पे एक्सपेक्टेशन है, और ये इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मौसम साजगार रहे और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं हम नहीं देख रहे हैं कि कहीं कोताही है, कहीं लैप्सेस है या कहीं खामियां है। अगर ऐसा भी हो तो यात्रियों की अपडेट के लिए, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि उसके लिए ऑनलाइन एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म गवर्नमेंट की तरफ से एस्टेब्लिश किया हुआ है, फोन नंबर दिए हुए हैं, और इसके अलावा हर ट्रांजिट कैंप में एक हेल्प डेस्क जो है वो एस्टेब्लिश या कायम किया गया है, और अगर किसी यात्री को कोई दिक्कत हो फिजिकली वहां पे जाए, वो कोई भी खिदमत, कोई भी असिस्टेंस या कोई भी मदद वहां से हासिल कर सकता है।
1: जी, प्रसन्नता की बात है कि हमारे यात्री जो है संतुष्ट होकर जा रहे हैं और संतुष्टि के साथ ही आ रहे हैं, और बड़ी बात ये भी है, हम ये कहेंगे फिलहाल जो मौसम है, श्रावण का महीना है, इसमें मौसम के मिजाज जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरह से व्यवस्थाओं के साथ तैयार है, हर जैसी भी सिचुएशन, जैसे भी हालात हो जाते हैं, लेकिन हम जो है हम ये कहेंगे कि सभी अपने अपने एंड से इस यात्रा की संतुष्टि के लिए सुखद तरीके से, ताकि ये अंत तक पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता इमरान नायकू, जो कि श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से जुड़े थे, जिन्होंने श्रीनगर के जो हालात बताए और मार्ग के बारे में बताया, मौसम के बारे में हमें जानकारी दी, और यही हमें पता चला कि ये यात्रा जो है बहुत ही सुखद तरह से आगे बढ़ रही है, और हम ये कहेंगे कि यात्री भी जो है संतुष्टि के साथ इस यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं, और हमारी कोशिशें भी यही है, प्रयास भी यही है, और कामना भी यही है कि ये यात्रा इसी तरह से सुखद तरीके से चलती रहे।

0: खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के संबंध में आप सुन रहे हैं बालतल मार्ग पे। ये प्रसारण FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, पहलगाम मार्ग पे FM 100.1 मेगाहर्ट्ज, और आप हमें DTH पर भी सुन पा रहे हैं। आराधना चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं, न्यूज ऑन AIR की ऐप पर भी, और साथ ही साथ हम उपलब्ध हैं प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओ, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे एकमात्र मोबाइल नंबर 9596990954959699094 पर, और अपने अनुभव या इस प्रसारण से जुड़ी कोई सलाह सुझाव अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना एक वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, और हम कहेंगे कि आपकी बात, आपके विचार जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं।

श्रोताओं, आपको बता दें, और जैसा कि आप जानते भी हैं कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के तीर्थ यात्री जो है, आज उनका कोई भी जत्था घाटी की ओर प्रस्थान उन्होंने नहीं किया भगवती नगर से, लेकिन जोश और उत्साह के साथ रोज़ाना हम ये कहेंगे कि वही हालत है और वही उत्साह है, और आधारश्वर भगवती नगर से रोज़ाना तीर्थयात्री बहुत प्रसन्नता के साथ जो है घाटी की ओर यात्रा के लिए बढ़ते हैं, और तीर्थयात्री उसी जोश उसी उत्साह के साथ बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए वहाँ प्रतिदिन पहुँच रहे हैं। हालांकि मौसमी उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिलते हैं, कई बार तेज़ धूप और उमस के कारण से या फिर वर्षा के कारण से इन यात्रियों को कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य होता है, और लेकिन फिर भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में ये यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं और दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्सुक नज़र आते हैं। और यहाँ पर ये भी आपसे कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एवं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से की व्यवस्थाओं से खुश भी हैं और एक अच्छा मैसेज लेकर फिर वापस भी जा रहे हैं, जिससे बाबा बर्फानी के तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगातार जारी है। और अपने श्रोताओं को बता दें कि क्षण क्षण की जानकारी के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप हमारा संग बने हुए हैं और ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz के अलावा DTH और मोबाइल ऐप एवं

0: जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।

0: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं, बालताल में रिकॉर्ड की गई आरती और आनंद लेते हैं इसका।
3: सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे वकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से सभी जो जैसे अपने गन टीवी शो खड़े एते नित्य दुखिता, जो लोग मैं संतोष धारण करना है, ईर्षी ग्रीनी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षी ग्रीनी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है, इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षी ग्रीनी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीविषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपनी अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है तो किस चीज का नहीं होना चाहिए? परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर।

0: मृगजाला
1: हरि ओम हरे हरे हरे हरे महादेव ओम हरे हरे हरे हरे महा ओम हरे हरे हरे हरे महादेव।

0: जय।
1: आप सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं, तो आप सभी भक्तजन आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए

0: जन्म जन्म का
1: नाच हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो। शिव शंभु ओम निरावलंब ममावलंबम कदम्बम मदीय पापा जलपादजं प्रवर्तताम् वाचि सदैव बम बम महादेव।

0: की जय।
1: सभी भक्तजन आरती आपको बाहर गेट के मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की।
2: जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में और आप सुन रहे थे बालताल में रिकॉर्ड की गई आरती। आपको बता दें कि आज 5 बजे तक कुल मिलाकर 8460 बाबा के भक्तों ने बाबा के द्वार पर हाजिरी दी है। दर्शन पाने का सौभाग्य जो है उनको मिला है, जिनमें पुरुषों की संख्या 5633, महिलाएं 2504, बालक 45, साधु 39, साध्वी 29, ट्रांसजेंडर 5 और सुरक्षाकर्मी 205 और यूं कुल मिलाकर ये संख्या बन जाती है 8460। श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे साथी इंजीनियर्स समीर अहमद भट्ट और नसीर अहमद मीर, और मैं आपकी साथी उद्घोषक सायका सलीम, और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री गुलाम रसूल आखून एवं श्री वसीम फारूक वानी। श्रोताओं, प्रातः 6:53 पर श्री अमरनाथ यात्रा का विशेष

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजा कर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

करे चिरौरी मामा के पिघलावे, मूड़ी पटके करे चिरौरी मामा के पिघलावे, गांव से काम बनाओ मल चाहे गांव का बात बताओ, गांव से काम बनाओ मल चाहे गांव का।

के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलत, बहनी के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलत, काना भूसी कैलस हंस के ऐसन मंत्र।

ज्योतिर्लिंग के रूप में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिनको हम अगर श्लोक के माध्यम से देखें तो वो है सौराष्ट्रे सोमनासम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम। महाकाल के रूप में उज्जैनी में भगवान शिव विराजमान होते हैं। महाकाल उज्जैन में स्थित है और उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश के राज्य में है, शिप्रा नदी के तट पर है। देखने में ऐसा लगता है कि एक ऐसे ये महाकाल है जिसको मैं अगर आपकी एक सूक्ष्म बात बताऊं तो ये है कि जितने भी शिवलिंग का या जितने भी ज्योति स्वरूप भगवान है उनके जलधरी उत्तर दिशा की ओर होती है, लेकिन उज्जैन में महाकाल की जो जलधरी है वो दक्षिण दिशा की ओर होती है। यानी अगर किसी को भी मृत्यु से भय हो रहा हो या मृत्यु तुल्य कष्ट हो, आधिदैविक कोई पीड़ा हो, तो वहां महाकाल के दर्शन करने मात्र से, उनको जल चढ़ाने मात्र से वो दूर होने लगती हैं। ये तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में इसलिए विराजमान है, और एक कथा भी आती है कि स्वयं महाकाल महाराजा के रूप में जाने जाते हैं। यह स्थल मुक्ति स्थान भी बताया जाता है, मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति अगर कहीं हो सकती है तो वह महाकाल के दर्शन से होता है। इसलिए बड़े सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक सुंदर मंत्र स्तुति के माध्यम से भगवान की आराधना की है। हम पूरे तो नहीं, लेकिन दो चार लाइन में उनके हम स्तुति को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। वो है नमः।

0: श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप जानेंगे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ओम नमः शिवाय।
1: नमस्कार। अब 30

हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोते तमीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम। भगवान शिव के चरणों में सभी माथा देखते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके दर्शन मात्र से अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। सौभाग्य को यदि बनाना हो इस श्रावण महीने में उज्जैन महाकाल का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि महाकाल के दर्शन करने मात्र से हमारे सारे मनोकामनाएं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कालों के काल महाकाल जब हम यही मन से माथा टेकते हैं या शीश नवाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी कृपा हमारे ऊपर पड़ने लगी है। श्रावण में भगवान शिव स्वयं अपने अपने लिंगों में विराजमान होते हैं, यह पौराणिक कथा भी है। श्रावण के महीने में तो वो कैलाश शिखर से प्रसन्नता पूर्वक आकर करके अपने ज्योति स्वरूप इस ज्योतिर्लिंग में समाहित होते हैं। जितने भी शैव संप्रदाय के लोग हैं वो भगवान शिव की जिनकी भक्ति की श्रद्धा होती है वह महाकाल में जाकर के उज्जैन में अपना माथा टेकते हैं। एक प्रसंग और आता है कि महाकाल के नजदीक भस्म आरती होती है, भगवान की जिस विधा से लेपन किया जाता है उस लेपन से और स्नान से भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। आइए अपनी श्रद्धा हमेशा भगवान शिव के चरणों में हम अर्पित करें, तभी तो कहा गया है स्वस्ति।

0: भवेत। इस तरह से अपनी श्रद्धा जब भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं तो हम तो धन्य हो ही जाते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे पूरे संगति पूरे परिवार के लिए मिलता है।
1: ओम नमः शिवाय। अभी आप इस कार्यक्रम में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुन रहे थे।

नवरात्र नवदुर्गानी उपासनानो आचे त्रीजो दिवस आ दिवस ना दुर्गा देवी चंद्रघंटा एम कहवाये ए चंद्रघंटा जी नु आपणे आ रीते ध्यान करीशुं।

हे महादेवी, अपनी घंटा जगत मा एना नाद थी व्याप्त थई ने दैत्यों ना तेज ने नष्ट करे। हे महादेवी, जेम पोताना पुत्रों नी माता रक्षा करे, एम ए घंटा अमोने पाप मा थी बचाओ, रक्षा करो। चंद्र घंटा शब्द नो अर्थ चंद्रहा घंटायाम यस्यात् सा एम थाई, इतले के जेमनी घंटा मा आह्लादकारक चंद्र से ए देवी चंद्र घंटा। ये तो जानीतुं छे के घंटनो ध्वनि देव देवियों ने प्रसन्न करतो होईश, आसुरी भावों ने बगाड़ी देश। बौद्ध जैन ईसाई धर्मस्थानों मा घंटनो ध्वनि सुमंगल मनाय छे ए जानीतुं छे। आ चंद्र घंटा देवी ए सिंहना वाहन वाला छे, दशभुजा छे, अनेक प्रचंड शस्त्रों थी युक्त छे। एमनी घंटा दुर्भावनाओनो नाश करे छे, नाद ब्रह्मनी जाने के तेनाथी अनुभूति थई छे। चालो चालो, आ नाद अने दिव्य शब्द आयो त्यारे श्रुतिना मंत्र ने पण आपणे भूलीए सांभळीए। आ संदर्भमां देवी अथर्वशीर्षनो आ मंत्र जोईए।

अर्थात प्राण रूप देहोए जे प्रकाशमान वैखरी वाणी ने उत्पन्न करी अने अनेक प्रकार थी लोको बोले छे। ए कामधेनु तुल्य आनंददायक अन्न तथा बल अपनारा वाक्रूपिणी वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिओथी संतुष्ट थयेला अमारी पासे पधारो। ओम चंद्रघंटायै नमः। अने आ साथे विश्व राष्ट्र अने समष्टिना कल्याण मंगल माटे आपणे दुर्गाजीनी वंदना करीए छीए।

हे शरण आप मारा, जगद्व्यापिनी विश्वरूपा दयामयी माँ दुर्गे,

भवभञ्जन भवभञ्जन गुण भवभञ्जन गुण अपमन अपन राम अपने राम।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।